एफएमव्यू 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में जुड़े हमसे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति धारा से।
1: गजानन वक्रतुंड भगवान श्री गणेश जी का हर रूप, उनकी हर कथा हमें बोध कराती है, मार्ग दिखलाती है। भाई कार्तिकेय और भगवान गणेश, जो ना हम इस बात पर जरा सोचे, भगवान गणेश के हर रूप

कार्यक्रम की शुरुआत में अभी आपने सुना अनूप जलोटा की आवाज में ये गणेश वंदना। आइए अब आपको सुनवाते हैं देवी चित्रलेखा की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: अनुराधा पौंडवाल के गाए इस गीता सार की रचना के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का विचार चिंतन।
1: केवल इस धारा का श्रृंगार करती है अपितु वह नए सृजनात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन कर मानव मन और मस्तिष्क को सृजन धर्मी भी बनाती है। यह सृजन धर्मिता ही हमारी प्राणवायु है और इस प्राणवायु के संवाहक होते हैं सजग, सक्रिय और समानुकूल, अपने विचार और जीवन शैली में परिवर्तन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति। यदि हम अतीत पर दृष्टिपात करें तो दृष्टिगत होता है कि परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता हर युग के कालखंड में स्वीकार्य होती आई है। सच भी यही है कि परिवर्तन की स्वीकारोक्ति जहां एक ओर उत्तरदायित्व के निर्वहन से प्रेरित है, वहीं दूसरी ओर कार्य निष्पादन को गति भी देती है। हम में से प्रत्येक ने अपने जीवन काल में यह प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो वस्तु जीवन को सुकून और आनंद देती है तथा जिसकी उपयोगिता जीवन में बहुत हितकारी होती है, उसको आधार बनाकर कुछ व्यक्ति उसको स्वीकार करने तथा अपनाने के लिए इस तरह प्रेरित करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सुझाए गए मार्ग का दृष्टिकोण सही है या गलत। जीवन में समय से पहले सफलता तथा बिना उद्यम एवं श्रम के संपन्नता प्राप्त करने के ध्येय से स्वीकार किया गया परिवर्तन हमें उद्विग्नता, क्रोध और बीमारी देता है। आज का समय वैश्विक है, अर्थ संपत्ति की प्रधानता है, भौतिक सुख साधन सुलभ हैं, हर तरफ विस्तार हो रहा है, विज्ञान, तकनीक, पढ़ाई, यहां तक कि हमारी आसपास की सड़क भी 2 लेन और 4 लेन की हो रही है। विचार नहीं है कि जब चारों तरफ विस्तार हो रहा है तो फिर व्यक्ति के जीवन में छोटापन क्यों आ रहा है? हमारे घर से आंगन क्यों विलोपित हो रहा है? पारिवारिक जीवन में अशांति क्यों है? परिवार टूट क्यों रहे हैं? व्यक्ति आत्म केंद्रित क्यों हो रहा है? आज सीधा साधा इंसान छलक क्यों जा रहा है? ऐसा प्रतीत होता है धैर्य, आशा, उत्साह, समन्वय, सहयोग, सुकून, आनंद आदि रचनात्मक गुण हमारे जीवन से दूर चले गए हैं। एक सामाजिक अध्ययन के अनुसार परिवर्तन की वकालत इस तरह की जा रही है जिससे भ्रम फैल रहा है, मन में एक लड़ाई चल रही है, गलत साधन और मार्ग पर चलकर शीघ्र संपन्न हो अथवा सही मार्ग पर चलकर सफलता का वर्ण यथासमय करें। बुद्धि में एक द्वंद है, कर्तव्य प्राथमिकता है अथवा अधिकार। इस विषम स्थिति का कारण परिवर्तन की स्वीकारोक्ति हेतु अंधी दौड़ है। यह स्थापित सत्य है कि इस धरा पर जितने भी जीव हैं उनमें से सिर्फ मनुष्य के पास विवेक है और हमारा विवेक ही वह जादुई चिराग है जिसके प्रकाश में जीवन के किसी भी क्षेत्र का अंधियार

0: छूमंतर हो जाता है। निसंदेह परिवर्तन के अंधानुकरण से विवेक ही छुटकारा दिला सकता है। प्रसिद्ध डाककर्मी पी ए नील ने एक जगह उल्लेख किया है कि मूर्धन्य विद्वान द्वारा कही हुई बात अति सम्मानित व्यक्ति की राय अथवा किताबों में वर्णित कथन आपके लिए तब तक उपयोगी नहीं है जब तक उस कथन को आपका कॉमन सेंस स्वीकार नहीं करता। यही कॉमन सेंस विवेक है। सीख और नीति की अलग जगाने वाले संत कबीर भी मानते हैं कि अनुचित वचन न मानिए, जदपि गुरैसु गाढ़ी है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़ी। तात्पर्य यह है कि उचित व अनुचित का निर्धारण विवेक से करना चाहिए। जिस तरह समुद्र में भटके हुए जहाज को लाइट हाउस राह दिखाता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन पथ पर विवेक लाइट हाउस का कार्य करता है। विवेकशील मनुष्य कार्य करते समय स्वयं सचेत रहते हैं, वह गलत कार्य नहीं करते और दूसरों के गलत आदेशों पर नीति एवं न्याय संगत निर्णय लेते हैं। भरत ने भी ऐसा किया। मां कैकेयी की अयोध्या के राजा बनने की आज्ञा को भरत जी ने अपने विवेक से नकारा, इसलिए आज भरत के सुयश में अभिवृद्धि हो रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर है वाणी जयराम और साथियों के।

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, संतजन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति, स्वर थे वाणी जयराम और साथियों के। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। आज स्वर है अनुसुईया बोरलिया और साथियों के।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। आज की गायक कलाकार है अनुसुईया बोरलिया और साथ ही

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। गायिका थी अनुसुईया बोरलिया और साथी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FMVO 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आठ बजे हो गई, समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का वक्त होगा 8:30। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक आप सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं के अनुरोध पर आधारित अनुरोध गीत का समय होगा 10:05। महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत का वक्त होगा 10:30, जिसमें आज की बात का विषय होगा महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां। साथ ही मुलाकात होगी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विषय पर। साथ ही श्रृंखला में जाने हेल्थ टिप्स, किचन टिप्स, रसोई में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के उपाय। 11 बजे से शाम 5:30 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 5:30 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे, जिसमें आज की बात का विषय होगा भारत की तकनीकी प्रगति में युवाओं की भूमिका। श्रृंखला मणि मंत्र में जाने रोजमर्रा के खर्चे में कटौती के आसान तरीके। साथ ही मिलिए एक मेहमान से। 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम गोधूली, जिसमें आज स्वर होंगे अनूप जलोटा के। 6:30

सबरस आप तक पहुंचाएंगे 6:50 पर, 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ग्रामीण भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा का वक्त होगा 7:20, जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और सामयिक कृषि चर्चा में बात करेंगे उन्नत बीज चयन कैसे करें इस विषय पर। भेंट वार्ता और लोकगीत के साथ ही सुनिए श्रृंखला बातें खेती किसानी की और कार्यक्रम के अंत में जाने बाजार भाव और मौसम के हाल। थोड़ी बातें और थोड़े गीत, जी हाँ कुछ बातें कुछ गीत, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए हमारा बैतूल। 8:45 पर होगी समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से 10:00 तक आप विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत आप तक पहुंचाएंगे रात्रि 10:00। 10:30 पर सुनिए सुगम संगीत, जिसमें आज गायक होंगे फैजल कपाड़िया। 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये तो थे आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों के संक्षिप्त जानकारी। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व में करेंगे कुंभाभिषेक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में दो मादा चीते किए आजाद। गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट इकाई की रखी गई नींव। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा, अब प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे युवा। और प्रदेश में टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबराबाद देश और दुनिया दोनों के लिए अहम है और तेलंगाना को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जहीराबाद में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। श्री मोदी ने देश हित में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम के साथ करने की अपील भी की।
1: भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थी, जिनमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। राज्यपाल कल श्री सरमा और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये दोनों चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 32 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है।
0: श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हैं, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। शिवपुरी विकासखंड के ग्राम धुवानी की इंदिरा जाटव भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली है। इस बारे में विस्तार से बता

0: रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
1: इंदिरा जाटव ने वर्ष 2016 में समूह गठन की प्रक्रिया से जुड़कर बांके बाबा स्व सहायता समूह का गठन किया और समूह की अध्यक्ष बनी। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल घर में सिलाई के माध्यम से आय अर्जित की। महिला इंदिरा जाटव ने बताया कि वे पहले मजदूरी और कृषि कार्य करती थी, लेकिन अब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गई है।
2: महिला समूह से नहीं जुड़ी थी तो मेरी कोई आमदनी थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण प्राप्त करने से मेरी आय बढ़ रही है।
1: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के डीपीएम डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि
3: जो हमारे समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीपी जिले में इंदिरा जाटव किया है और वो 12,500-13,000 रुपए प्रति माह कमा रही है। और जो प्रधानमंत्री का सपना था कि लखपति दीदी बने, तो लखपति दीदी की श्रेणी में भी आ चुकी है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है और कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2055 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है और आत्मनिर्भर एमपी के लिए खादी और ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 194 बुनकरों को 268 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भोपाल के 27 स्कूलों कॉलेजों के 250 से ज्यादा छात्र शिक्षक भाग लेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ स्वदेशी तकनीक और विज्ञान की अहमियत पर बच्चों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही एक रोबोटिक्स वर्कशॉप भी होगी, जिसमें बच्चे खुद टीमें बनाकर रोबोटिक्स मॉडल तैयार करेंगे। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को आंधी तूफान की वजह से एमपी टूरिज्म का क्रूज डूब गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। अब सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया है। यह आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और यह भी बताएगा कि हादसे के वक्त बचाव का काम ठीक से हुआ या नहीं। साथ ही प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज के लिए नए सेफ्टी नियम भी तय किए जाएंगे। बात मौसम की। प्रदेश में 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आज मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में तेज गर्मी रहेगी। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिला जुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। अब बात खेल की। प्रदेश के शूटर नीरू दंडा ने कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में विवान कपूर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। नीरू राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नीरू को बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। रायपुर में कल रात खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं आज धर्मशाला में 7:30 बजे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के गौरीघाट पर 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों ने किया अभ्यास। बैतूल के नंदावन धन विकास केंद्र में आज न्यूजीलैंड का प्रतिनिधिमंडल करेगा भ्रमण। मधु संग्रहण और जनजातीय आजीविका गतिविधियों का लेगा जायजा। रतलाम टिकट चेकिंग टीम ने 3,41,00,000 रूपये का राजस्व अर्जित कर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में बनाया नया रिकॉर्ड। बालाघाट के काना टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का 2रा चरण पूरा। 4 जंगली भैंसे विशेष बाड़े में किए गए मुक्त। डिंडोरी में आरोह ग्रीष्मकालीन कैंप के तहत मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन हुआ। और पन्ना जिला चिकित्सालय में 4 से 10 मई तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह में मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 7:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का ये गीत। आवाज है किशोर कुमार, गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सुनते हैं फिल्म हमराज का गीत। आवाज है महेंद्र कपूर की, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा और सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविंद्र सिंह क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141234722 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 234722 या 231944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम का गीत। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का गीत। आवाज है किशोर कुमार की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार के गाए इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हरियाली और रास्ता का गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के बाद साथ ही आज का यादों के झरोखे से यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है स्थानीय जनउपयोगी सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: स्थानीय खबरों के साथ मैं हूं सुनीला पवार। श्रोताओं, आप तक पहुंचाते हैं बैतूल जिले की कुछ जरूरी खबरें। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य जिले में निरंतर गति एवं गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट के मार्गदर्शन में सभी नगरीय एवं ग्रामीण चार्जों में फील्ड कार्य गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ संपादित किया जा रहा है। जिले के कुल 2,802 हाउसिंग लिस्टिंग ब्लॉकों में से लगभग 2,100 HLB में कार्य प्रगतिरत है, जबकि लगभग 700 HLB का कार्य पूर्ण कर पोर्टल पर सफलतापूर्वक लिंक किया जा चुका है। जिले में अब तक लगभग 25% कार्य पूर्ण हो चुका है। अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार गौतम, जनगणना कार्य निदेशालय से नियुक्त जिला प्रभारी श्री भरत गौर, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद अडलक एवं तकनीकी टीम द्वारा विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर फील्ड कार्यों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। आज नगरीय चार्ज शाहपुर, जिसमें 16 HLB हैं, जिसमें से सुपरवाइजर सर्कल 2, कुल HLB 5 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कमियों का सुधार करवाते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मकान नंबरिंग एवं नजरी नक्शों का किया जा रहा परीक्षण। निरीक्षण के दौरान प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे मकान नंबरिंग, नजरी नक्शा, निर्माण एवं HLO एप में दर्ज प्रविष्टियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा स्थल स्थिति से मिलान कर जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मकान अथवा परिवार सर्वेक्षण से छूटने न पाए। डेटा की गुणवत्ता एवं सटीकता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रविष्टि सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फील्ड स्तर पर तकनीकी सहयोग एवं शंका समाधान जारी। चार्ज स्तर पर गठित टीमों एवं फील्ड ट्रेनर्स द्वारा फील्ड में आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। साथ ही प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को HLO एवं संचालन एवं डेटा प्रविष्टि संबंधी आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रगणकों को सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान करें, जिससे विकास योजनाओं के लिए विश्वसनीय एवं सटीक आंकड़े प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक कहानी है विकास खंड आमला के ग्राम तोरनवाड़ा की रहने वाली श्रीमती बबीता पवार की है, जिन्होंने मेहनत, आत्मविश्वास और समूह की ताकत से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर आज लखपति दीदी के रूप में पहचान बनाई है।

श्रीमती बबीता पवार जय मां रेणुका आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़ी है। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत CIF मद से 30,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस सहयोग से उन्होंने अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया और कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के प्रति उनका विश्वास बढ़ा। श्रीमती पवार की सफलता ये साबित करती है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और आत्मविश्वास मिले तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये तो थी आज की स्थानीय खबरें। आज की स्थानीय खबरों में इतना ही। बैतूल जिले की स्थानीय खबरों के लिए सुनिए सुबह सवेरे हर दिन सुबह 7:50 पर।

0: सुबह सवेरे
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। कुछ ही पलों में आप तक पहुंचाएंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को

0: पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो

0: वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं? उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगबा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा

0: रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-04-81, 011-23-71-71-7 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस सिटीजन्स नॉट टू बाय गोल्ड फॉर अ ईयर, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable.

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। 8:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: कपूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखते हैं,
1: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका।

0: You have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
6: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
5: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।

0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण

0: में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
1: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगा कर ही दम लूंगा।
2: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
1: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
1: नाथ सिंह, निशाना साधो।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
1: फायर।
3: सर
1: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
1: फायर।
3: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
1: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
2: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, जो हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना

0: उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अगला प्रसारण होगा विविध भारती मुंबई से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बोल बच्चन इस फिल्म का गाना हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गाना, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: राउडी राठौड़ फिल्म का ये गाना कुमार सानू, श्रेया घोषाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, संगीत साजिद वाजिद का।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनको प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना जब तक है जान इस फिल्म का गाना, हर्षदीप कौर की आवाज, गुलजार के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की और भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कॉम्पिटिशन थी। और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो यही आदर्श मेरे सामने था।

पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया। टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चित। उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली,

0: सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हैंड्स अप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्स अप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था, और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में एबीसीडी भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ, क्या

0: हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
1: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
0: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना, वो है ये सब। हाँ। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू? गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई, इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा? पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी, इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
1: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
0: रिश्तेदारी का तो खेला ही है सब।
2: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था, और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया, तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे, और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
4: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिले लूटने के लिए।
5: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
4: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
4: आ गया हसमुख, आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
4: पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
4: कैसे?
6: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
4: क्या?
6: हाँ।
4: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
4: हाँ।
6: उदित करके सारे जवाब के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन ए अंडू पांडो।
5: यस सर।
4: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे,

0: अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
1: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
2: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।
3: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली।

0: किया जाए।
1: उली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं, वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।
2: आप ये

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाते हो, जंप कर जाते। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी, आलेख वेद प्रकाश शर्मा का, वाचन स्व थाना सचदेव। सबसे पहले बात विदिशा नेशनल लोक अदालत की। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में 34 खंडपीठों का गठन कर आपराधिक, सिविल, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक और राजस्व से जुड़े कुल 1716 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शेख सलीम ने बताया कि इन मामलों में करीब 5,99,00,000 रूपये की सेटलमेंट राशि तय की गई है। अदालत के साथ न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले के खामखेड़ा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे नल जल योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 46,00,000 रुपए से अधिक की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना के तहत नया नलकूप, सम्प वेल और करीब 5,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब गाँव के सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुँचा दिए गए हैं। अब बात मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जाँच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी है। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केंद्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को FTK किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में शासकीय ITI विदिशा में जिला होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य कविता रघुवंशी ने बताया कि छात्रों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाव के उपायों की जानकारी

0: जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में नई पहलें देखने को मिल रही है। पीएम श्री योजना के तहत डाइट विदिशा में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 चरणों में चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। वहीं चलो घाट की ओर अभियान के तहत बेतवा नदी संरक्षण के लिए साप्ताहिक श्रमदान शुरू किया गया है। जन अभियान परिषद के सहयोग से चल रहे इस अभियान में युवा और सामाजिक संस्थाएं नदी घाटों से जल कुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा हटा रही हैं। विदिशा जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वगणना अभियान की सराहना की। बोरखेड़ी गांव में 100% स्वगणना कराने वाले शिक्षक के जी राजपूत समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र में विदिशा जिले के किसान नई पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक गेहूं चना की खेती छोड़ अब कई किसान ड्रैगन फ्रूट, चिया सीड और कलौंजी जैसी औषधीय फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशवंत तिवारी ने बताया कि चिया सीड की खेती से किसानों को प्रति बीघा 70,000 से 1,00,000 रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो रही है। वहीं सिरसी गांव के किसान रूपेश श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बेहतर काम करने पर विदिशा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निदेशक सुमित मिश्रा ने विदिशा को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल होने पर जिला प्रशासन की सराहना की है। खासतौर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और DEGS टीम की प्रशंसा की गई। अब बात विदिशा जिले से मिली हुई कुछ प्रेरणादायक खबरों की। ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई करने वाले अनिकेत मैना आज MPEB में प्लांट ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं केमिकल इंजीनियर चिराग गौड़ ने ITI से मैकेनिक डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर बुद्धि प्लांट में अप्रेंटिसशिप हासिल की। पीएम विश्वकर्मा योजना से 1,00,000 रुपए का कर्ज लेकर भरत सिंह ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली है। वहीं वन स्टॉप सेंटर में गलत ट्रेन में चढ़ जाने से विदिशा पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद बिहार के मधुबनी में उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा RBS के योजना के तहत नटेरन की 10 वर्षीय खुशी का आयुष्मान कार्ड से भोपाल के चिरायु अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग का सफल निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। विदिशा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का था, वाचन था धारणा सचदेव का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है
1: चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं आपकी फरमाइश। लेते हैं पहला पत्र जो आया है डोंगरगढ़ गांव छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का ये आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं फिल्म दिल का गाना। तो चलिए इन्हें सुनवाते हैं अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

0: इस गीत को सुनना चाहते थे नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, नीति, कुशल, प्रखर, सुरभि, अश्विनी, राजेंद्र जी शाह, सुषमा, मंगलाबेन शाह एवं इनका पूरा शाह परिवार। और साथ ही एक और व्हाट्सएप मैसेज आया था संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
6: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है आपका अंतराल के बाद। और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल करें, उससे पहले आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज रात 8:20 पर कार्यक्रम हमारा बैतूल में सुनिए जनगणना 2027 पर केंद्रित अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद कुमार अडलक और तकनीकी प्रभारी श्री आशीष वागादरे से सचिन भागवत की चर्चा। और कार्यक्रम में ले लेते हैं अगला पत्र जो आया है छत्तीसगढ़ दतरेंगी से। भागवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, लीलावती वर्मा, विनीता और रुद्र वर्मा का, ये आज सुनना चाहते हैं फिल्म तपस्या का गीत। तो चलिए इन्हें सुनवाते हैं आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म तपस्या का गीत। गीत लिखा है MG हसमत ने और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

इस गीत को सुनना चाहते थे ग्राम कुही रानीपुर से हेमराज वर्मा। श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो पीले पोस्टकार्ड पर फिल्म के नाम और गाने के बोल के साथ अपना नाम और पता लिखकर भेज दीजिए हमें इस पते पर। कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, पिन है 4600001। और यदि आप अपनी फरमाइश व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज रहे हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। और अब किसी भी फरमाइशी पत्र को या मैसेज को शामिल करने से पहले हम आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे देते हैं। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा। और सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविन्द्र सिंह क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141234722 या 2319444 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने, 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 2347222 या 2319444 और बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। और चलिए अब अगला पत्र शामिल कर लेते हैं जो आया है ग्राम अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति, तारिणी गुड़िया और सूरज रेयांश का ये सुनना चाहते हैं फिल्म वीर का गीत। तो चलिए रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में हम इन्हें सुनवाते हैं फिल्म वीर का गीत, जो लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: इसी गीत को सुनना चाहते थे जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और चलिए अगला व्हाट्सएप मैसेज शामिल करते हैं जो आया है आमला से, श्रुति, वैशाली, कृतिका, हुस्ना, साक्षी और इनकी सभी सहेलियों का। ये आज सुनना चाहती है फिल्म रावण का गीत। चलिए इन्हें सुनवाते हैं विशाल ददलानी, शेख राज रावजेनी और साथियों की आवाजों में फिल्म रावण का गीत। गीत लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

फिल्म रावण के इस गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है और हमारे जिन श्रोताओं की फरमाइशी गीत आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाई है, हम उन्हें बता दें कि हम अगले प्रोग्राम में आपकी फरमाइशी गीत जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम होता है हर दिन सुबह 10 बजे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी बैतूल। और अब अनुमति दीजिए अनुरोध गीत से सुनीला को। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, 10:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करते हैं शुरुआत आज की बात के साथ, पर उससे पहले बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज और बने रहिए अपनी रेडियो सखी अलका के साथ, क्योंकि आज हम करेंगे एक खास मेहमान से बात और गीत संगीत के साथ ही सेहत का भी रखेंगे ख्याल। तो शुरू करें आज की बात। आज का विषय हमने लिया है महिला श्रमिक और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां। श्रोताओं, हमारे समाज में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो हर दिन मेहनत करके अपने परिवार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं। कोई खेतों में, कोई घरों में, तो कोई सड़क निर्माण और कोई दुकानों या फिर छोटे छोटे उद्योगों में। लेकिन इन महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्र में काम करता है जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां काम तो होता है लेकिन नौकरी की कोई स्थायी गारंटी नहीं होती। यहां काम करने वालों को अक्सर तय वेतन, छुट्टी, पेंशन, बीमा

0: क्षेत्र भी हैं जहां महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे में असम्मानजनक व्यवहार, शोषण और मानसिक दबाव का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। लेकिन कहीं नौकरी ना छूट जाए, इस डर से वे अपनी आवाज भी खुलकर नहीं उठा पाती। इसके लिए जरूरी है कि हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बने। इसी के साथ दोहरी जिम्मेदारी जैसी चुनौती भी इन महिलाओं को उठानी पड़ती है। बाहर के काम के अलावा घर, बच्चे, परिवार, इन सबके बीच सेहत और आराम को भी ये पीछे छोड़ देती हैं। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा और जानकारी की कमी। बहुत सी महिलाएं अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं रखती। यदि उन्हें सही जानकारी, प्रशिक्षण और सहयोग मिले तो वे आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड, स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि महिला श्रमिक को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ बेहद जरूरी है कि समाज की महिलाओं के श्रम का सम्मान किया जाए और उन्हें बराबरी का अवसर दिया जाए। तो ये भी थी हमारी आज की बात। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है बैतूल FM। तो चलते हैं सुरों की दुनिया में और सुनते हैं उम्मीद फिल्म का ये प्यारा सनगमा रफी जी की मखमली आवाज में। शकील बदायूनी के इस गीत को संगीत से सवारा है संगीतकार रवि ने।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। प्रोग्राम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और करते हैं मुलाकात आज की हमारी खास मेहमान पल्लवी दुबे से। खास पल हमारे लिए गर्व और प्रेरणा से भरा हुआ है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में पधारी है वो शख्सियत जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान से आसमान को छू लिया है। हमारे बैतूल की होनहार और प्रतिभावान बेटी, अपने सपनों को साकार करने वाली, युवाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा, UPSC जैसी कठिन परीक्षा को सफलता से उत्तीर्ण करने वाली पल्लवी दुबे आज हमारे साथ हैं, जिनका चयन खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के मेरा युवा भारत विभाग में क्लास 1 अधिकारी के रूप में जिला युवा अधिकारी पद के लिए हुआ है। ये सिर्फ उपलब्धि नहीं श्रोताओं, बल्कि हर युवा के लिए एक प्रेरक संदेश है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से लक्ष्य पाना असंभव नहीं। सुनते हैं इस यात्रा की कहानी उन्हीं की जुबानी। पल्लवी जी, सबसे पहले आकाशवाणी बैतूल के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस सफलता की बहुत बहुत बधाई।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, वो कौन सा पल था जब आपने ये तय किया कि आपको UPSC ही क्लियर करना है?
3: ये जर्नी की जो शुरुआत है वो कुछ हिस्सों में रही है, जैसे मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। बचपन का एक वाक्य मुझे याद आता है, मम्मी ने मुझे बताया था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने की कोशिश की थी, MPPSC के एग्जाम में अपियर हुई थी, तो वही मेरा सबसे पहला प्रेरणा सूत्र बनी।
2: क्या बात।
3: जब मैं क्लास 5th में थी तो हम यहाँ जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के लिए परफॉर्म करने गए थे। वहां मैंने पहली बार कलेक्टर साहब को सलामी लेते हुए देखा था। वो मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट था कि ये एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। वो एक बचपन का अनुभव रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब समझ में आया कि सिविल सर्विसेज का कितना अहम रोल होता है समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने में, तो ये सर्विस मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट करती गई और फिर निरंतर मैं इसके लिए प्रयास करती चली गई।
2: बहुत अच्छी बात है पल्लवी। तो आपका चयन UPSC के प्रतिभा सेतु पहल के माध्यम से हुआ, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
3: प्रतिभा सेतु एक सरकार की नई स्कीम है जो जून 2025 से ही शुरू की गई है। आप सभी जानते हैं कि हर साल लाखों हजारों विद्यार्थी UPSC सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अपियर होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हजार का ही चयन हो पाता है। इसमें मान लीजिए कि अगर 1000 व्यक्तियों का चयन होता है तो उसके लिए 3000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे होते हैं।
2: बिल्कुल।
3: यानी कि 2000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ मार्क्स से, 2 नंबर, 4 नंबर से सिविल सर्विसेज की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। अब ये प्रतिभा सेतु पोर्टल एक ऐसी चीज आई है

0: इससे वो जो बचे हुए 2000 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं उनके लिए सरकारी तथा प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज को गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है और इसी माध्यम से इस वर्ष युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय ने भी वो स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं उनको अपने यहाँ पर चयन किया है एज युवा खेल अधिकारी।
1: इस दिशा में तैयारी शुरू करने का फैसला कब और कैसे लिया?
0: जी तैयारी बेसिक स्कूल लेवल से ही ये रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल के वक्त से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रही थी, तो मुझे बेसिक गाइडेंस टीचर्स मम्मी सीनियर्स के द्वारा मिलता रहा कि आप कुछ बेसिक चीजें जैसे कि जनरल नॉलेज पढ़ते रहिए, अखबार लगातार पढ़ते रहिए। हाँ, सीरियस तैयारी की अगर डेडिकेटेड एग्जाम प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो वो जरूर मैंने अपने कॉलेज ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी।
1: इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान चुनौतियां तो बहुत आई होंगी पल्लवी, इसका सामना किस तरह कर पाई आप?
0: जी, कोई भी कार्य छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आसान तो नहीं होता है, लेकिन मुझे कुछ हिंदी कविताएं हमेशा से प्रेरणा देती रही हैं। एक सेंटेंस है जो मैंने अपने नोटिस बोर्ड पे स्टडी बोर्ड के आगे लगा रखा है और वो बोलता है धैर्यम दृढ़त्वाम समर्पणम, यानी कि पेशेंस परसीवरेंस एंड डेडिकेशन। तो ये तीन वाक्य हैं, तीन शब्द हैं जो मुझे हमेशा से मोटिवेट करते रहे हैं और आगे बढ़ाते रहे हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही पल्लवी। और अक्सर एक स्टूडेंट के लिए निरंतरता बनाए रखना कठिन होता है, तो आपने अपने पूरे सफर में खुद को कैसे प्रेरित और केंद्रित रखा?
0: मेरे साथ इस सफर में सबसे अच्छी एक बात ये रही कि मेरा प्रिपरेशन का जो अधिकतम समय है वो घर पे बीता है, और घर पे रहने की वजह से कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना या निरंतरता बनाए रखना मेरे लिए काफी आसान होता था, क्योंकि बाकी किसी चीज की मुझे टेंशन नहीं होती थी घर पे रहने की वजह से। जैसे अगर आप हॉस्टल में या बाहर रहकर तैयारी कर रहे होते तो काफी सारी आपको और भी चीजें मैनेज करनी होती हैं, लेकिन घर पे क्योंकि कोई और चीज की टेंशन नहीं होती थी तो एक रूटीन फिक्स बना लिया था जिसको फॉलो करने में मम्मी भी लगातार पुश करती रहती थी कि अगर 5 बजे उठना है तो मम्मी का भी ये काम होता था कि 5:15 तक तो वो उठा ही दें, और बस जैसे ही आपका स्टडी शेड्यूल खत्म हुआ उस समय आपको नाश्ता मिल जाएगा, आपको समय पर खाना मिल जाएगा, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही वो चीज भी।
1: परिवार वालों का साथ तो रहता ही है
0: जी।
1: तैयारी के दौरान कितना समय आप स्टडी को देती थी और डेली रूटीन क्या रहता था आपका? वैसे सब कुछ मैनेज करना भी तब कठिन भी होगा, तो सारे कामों को कैसे क्या मैनेज करती थी आप?
0: नॉर्मल पीरियड में 8 से 9 घंटा तो लगातार दिन की पढ़ाई होती ही थी, और जब एग्जाम पास आ जाता था जैसे प्रीलिम्स या मेंस का समय है तो दिन में 12 से 13 घंटे तक भी मैंने पढ़ाई की है। इसके लिए कुछ चीजें ऐसी होती थी, मैंने अपने दिन को 3 भागों में बांट दिया था। मैं रात में पढ़ाई नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम जो है वो हमें दिन में ही देना है और दिन में हमारा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहला जो मेरा स्लॉट होता था वो सुबह उठकर दोपहर के 12 बजे तक, सुबह चाहे 5 बजे उठूं चाहे 6 बजे उठूं, तब से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो मेन चीज होती थी पढ़ने की उसको पढ़ लिया करती थी। फिर एक छोटा स्लॉट होता था दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और उसके बाद एक अंतिम स्लॉट होता था शाम को 6 या 7 बजे से लेके रात में 10 बजे तक का, जिसमें मैं अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर देती थी। और यही स्लॉट मैंने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से लेके आखिर तक यही पैटर्न लगातार फॉलो किया था पढ़ाई के लिए।
1: तो सतत रही आप इस पैटर्न को लेकर?
0: जी, ये पैटर्न मेरे लिए फिक्स था, और सब्जेक्ट्स को मैं अपनी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अंदर बाहर कर लेती थी, लेकिन जो मेजर मेरी दिनचर्या थी वो कुछ इसी तरह से होती थी।
1: फिर दूसरे कामों को समय दे पाती थी या कहीं जाना आना? मीडिया से कितनी दूरी बनाई आपने?
0: मीडिया से तो टीवी का ऐसा रहता था कि सिर्फ खाना खाते वक्त टीवी देख लेते थे, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते ही थे तो जो देश दुनिया की खबरें हैं वो मिल जाती थी। सोशल मीडिया अकाउंट्स उस वक्त पे जो भी थे वो सारे डीएक्टिवेट कर दिए थे। फोन में ही जो मैं आपको बता पा रही हूँ कि मैं 12 से 13 घंटे दे पाती थी, ये मेजर करने के लिए फोन में ही एक ऐप था जिससे मैं मेजर करती थी, और वही ऐप बाकी सारे दूसरे ऐप्स को भी डिसेबल कर देता था ताकि आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर रह सके, क्योंकि फोन जरूरी भी है इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है सबसे बड़ा।
1: बिल्कुल सही है, सही इस्तेमाल फोन का बहुत जरूरी है जो आपने किया
0: जी।
1: किसी भी जंग से पहले रणनीति बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपने किस तरह से और कौन सी रणनीति बनाई जो आपको प्रभावी लगी? पढ़ाई के लिए कोचिंग का सहारा लिया या फिर सेल्फ स्टडी करी आपने?
0: जी, मुख्यतः मेरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी पर ही केंद्रित रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एक फिक्स शेड्यूल जो दिन का होता था, मैं उसी के हिसाब से, और सब्जेक्ट्स को भी कितना टाइम देना है वो मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करती थी कि अगर मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो फिर मैं उस सब्जेक्ट को कम समय दूंगी तो भी चलेगा, और अगर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स जो एक ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा वक्त देने की आवश्यकता है तो मैं उसको ज्यादा वक्त दिया करती थी। तो मेरे लिए सेल्फ स्टडी सबसे कारगर रही।
1: सफलता आसानी से नहीं मिलती, ये सब जानते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा लक्ष्य पाना बड़ा मुश्किल है? और परेशानी तो आई होंगी, उस समय खुद को कैसे संभाला आपने?
0: जी, परेशानियां तो आती हैं, एग्जाम कई बार लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कई बार एग्जाम में हमेशा सफलताएं नहीं मिलती हैं, कभी मेंस लिखकर फेल हो जाना, मेंस के बाद फिर प्री देकर रिजल्ट अपने हक में ना आना, बहुत ज्यादा कठिन समय रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी कविताएं मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही हैं, और ऐसी ही कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमेशा से मुझे मोटिवेट करती आई हैं, कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो निज नाविक पतवार। तो मुझे हमेशा से ये मालूम था कि कठिनाई तो आएगी लेकिन सफलता भी एक दिन आएगी, और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते जाना है।
1: और उस समय पेशेंस की भी बहुत जरूरत होती है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी पढ़ाई के दौरान बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे में खुद को कैसे संतुलित रखा आपने?
0: मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर ध्यान देना, और जब तक आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा आप कभी भी, ये सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं पा पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आपको जो भी चीजें अच्छी लगें आप उनके लिए जरूर दिन में अपना थोड़ा समय दें, आपके परिवारजनों से आप बात करते रहें, आपके कुछ एक दो अच्छे मित्र हों जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए आपका आपको सपोर्ट करते चले, उनसे जरूर बात करें, और जो भी एक दो हॉबीज आपको पसंद हो, वो कविताएं सुनना हो, पढ़ना सुनना हो सकता है, वो गीत सुनना हो सकता है, वो कोई गेम खेलना हो सकता है, उसके लिए हमें जरूर समय देना चाहिए।
1: सही कहा आपने। और आपका सिलेक्शन, जैसा कि सबको पता ही है, कि जिला युवा अधिकारी के लिए हुआ है, तो इस पद की जिम्मेदारियों के बारे में शॉर्ट में हमें बताइए।
0: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, तो हमारे युवाओं को सशक्त करना, सरकार की स्कीम्स को उन तक पहुंचाना, वो सरकार की गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो हमारा विकसित भारत 2047 तक बनाने का लक्ष्य है उसमें युवा का सहयोग, साथ साथ में उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो युवाओं तक पहुंचे, ये हमारे विभाग का मुख्य कार्य है।
1: रिजल्ट देखते समय आपको डर नहीं लगा? जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो वो देखते समय आपको डर नहीं लगा, और रिजल्ट के बाद क्या रिएक्शन था और कैसा आप महसूस कर रही थी?
0: मुझे बहुत पहले मेरे सीनियर टीचर हैं, उन्होंने ये बात बताई थी और मैं उसे अपने जीवन का मूल मंत्र मानने लगी हूँ कि हमारा जो कार्य है वो सिर्फ एग्जाम देने तक का या अपनी मेहनत करने तक का होता है, रिजल्ट जो होता है वो कभी भी हमारे हाथों में नहीं होता है, तो रिजल्ट से अटैच होना बंद कर देना चाहिए, और जिस दिन हम रिजल्ट से अटैच होना बंद कर देंगे उस दिन हमारी तैयारी या हमारी मेहनत और बेहतर हो जाएगी। तो बिल्कुल सच्चे मन से बताऊं तो रिजल्ट आने के वक्त मैं तो बिल्कुल शांत थी, मुझे लगा था कि हाँ फाइनली जिसके लिए हम इतने समय से तैयारी कर रहे थे आज वो हमारे हाथ में आ गया। लेकिन ये भी बताना चाहूंगी कि परिवार और खासतौर से मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, और परिवार के साथ साथ जितने भी जान पहचान के हैं, दोस्त मित्र, सभी बहुत ज्यादा खुश थे। मैं हालांकि बहुत काम स्टेट में थी उस वक्त पर भी।
1: क्या बात है, इतना धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय इतनी खलबली होती है, दिमाग इतना बिजी रहता है कि क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, तो आपने इतनी शांतता से उसको उस समय को भी निकाला, तो बहुत बड़ी बात है। युवाओं के साथ काम करने को लेकर क्या दृष्टि है आपकी?
0: मैं एक विजन अपने माइंड में लेकर चल रही हूँ युवाओं के साथ काम करने के लिए, और वो विजन 2 V's पर काम करने का है। एक है वैल्यू बिल्ड करना, वैल्यू एजुकेशन पे काम करना, दूसरा वोकेशनल एजुकेशन पे काम करना। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के कैरेक्टर को जो बनाता है वो उसकी कोर वैल्यूज होती हैं, और अगर हमें युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट के अच्छे साधन देने हैं तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो दूसरा उनके वोकेशनल ट्रेनिंग पे अच्छा खासा काम करने की आवश्यकता है।
1: पल्लवी जी, अंत में छोटे शहरों से आने वाले

0: विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सिविल सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
1: छोटे शहरों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खासतौर से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो जर्नी होने वाली है ये बहुत छोटी नहीं होने वाली है, ये एक लंबा सफर है। एग्जाम अपने आप में एक 1.5 साल का साइकिल लेके चलता है, तो आपको भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रिपरेशन में आते हैं ध्यान रखिए, अपने कोर सब्जेक्ट्स को आपको स्ट्रांग करना है, रिविजन पे अच्छा ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गाइडेंस के लिए हमेशा उपयोग में लेते रहना है। 100 स्ट्रैटेजीज के पीछे मत भागिए, आपके लिए आपको जो उचित लगे वो स्ट्रैटेजी अपनाइए और उस पर लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए व्यवस्थित पढ़ाई हमें करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये थी हमारे साथ जिला युवा अधिकारी पल्लवी दुबे से हमारी मुलाकात। श्रोताओं, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें सच करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और ऐसा ही कर दिखाया है हमारे बैतूल की बेटी पल्लवी ने। बहुत बहुत बधाइयां आपको इस काम के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आप आगे ऐसे ही सफल होती रहे, इनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। संघर्ष की राहों में वही आगे बढ़ता है जो मुश्किलों से डरकर कभी रुकता नहीं। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, हौसला कम होने ना पाए। सुनते हैं उम्मीद और आत्मविश्वास का संदेश देता हुआ ये गीत।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसा।

0: से भेजने के लिए है।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपने ट्यून किया है बैतूल एफएम। कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं कुछ सेहत से भरी बातें। जानते हैं खुद को सारा दिन किस तरह ऊर्जावान रखें। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत सही करें। उठने के बाद गुनगुना पानी जरूर पिएं। नाश्ते में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के अलावा प्रोटीन और फाइबर युक्त पदार्थ जैसे कि पोहा, उपमा, दलिया जैसे नाश्ते शामिल करें। लगातार बैठने से शरीर सुस्त हो जाता है, इसलिए चहलकदमी बनाए रखें। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या जंक फूड की जगह बीच बीच में ककड़ी, गाजर, मखाने या दही जैसे पदार्थों का सेवन करें। योग करें और पर्याप्त नींद लें। और हाँ, खुश रहें, क्योंकि खुश मन और सकारात्मक सोच भी शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। इसी के साथ सबसे जरूरी बात, गीत संगीत से जरूर खुद को जोड़ें, क्योंकि ये चिंता मिटाकर दिमाग को शांत करता है। तो फिर चलते हैं सुरों की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
3: प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग

मिश्रित संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे कुछ गीत जो मिले जुले होते हैं, कुछ भजन, कुछ कव्वाली, कुछ पॉप सॉन्ग्स, इस तरह के अलग अलग गीतों का ये मिला जुला रूप है। तो लीजिए, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग, और मैं हूँ आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनीता राव के गाए इस गीत का के साथ, जिसे लिखा है श्याम अनुरागी ने। सुनीता राव ने इसका संगीत बनाया है और एल्बम का नाम है चमकी बिजोरिया।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवाले। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं

0: Vinashati. Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्र घट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो

0: के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार है वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam.

0: विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है।

0: आवश्यकता क्यों है। त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं। ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं। इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो
1: प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jaisimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal, Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारे समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: only, so not Amrit Mahotsav.
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, तो एकानंद भगवान विष्णु, चतुरानंद भगवान ब्रह्मा और पंचानंद भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव है। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है।

0: और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधा रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सके। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम

0: Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the Indian Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओंकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो है उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग है उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि

0: यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया। तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना, एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई। और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवन लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वर्ग लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार। जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रहकर प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपने एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाए या ना लाए, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना

0: तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मदः पूर्ण मदम पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यहाँ आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पया बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Shri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Shri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय

0: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Shri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Shri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय

0: And this is the hallmark of the government of India, and the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp, and also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होंगी।
0: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग।
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं

अतीत है जो स्वयं काल स्वरूप है। आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे

पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करें, और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।

दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना

और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के

0: आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश के प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: वी Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह

समूहों को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई।
1: जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराए, हमको लुभाए। मन कहे क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी

शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को, करण अर्जुन फिल्म से, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे। तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: से मेरे लहर उठे ठंड पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के
1: संग। संयोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
2: सुनिए,
3: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
5: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: समय का समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं।

करता है, इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकले तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थी फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

तो कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी विशेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है, तो इस पर

गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है, तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने, इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है, नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है, मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो भी मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं, और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

के बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद 0 होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एयरो वेटरिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कुरू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कुनू में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कुनू श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। लगभग 5000 किलोमीटर में इनका बसेरा हुआ है।
0: डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म निवेश एवं जैव विविधता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों की पुनर्स्थापना को निरंतर सफलता मिल रही है और आज प्रदेश ने देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कुनू नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय दो तरफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज भी जिले में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पादोना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देशवासियों और समस्त प्रतिभावान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय

0: प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय सिंह ने कल खंडवा जिले के आवलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 10वीं 12वीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और बरगीरे में हुए भीषण क्रूज हादसे की न्यायिक जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड संजय द्विवेदी को सौंपी गयी है, जो आगामी 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है, जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ

0: उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
4: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण

0: को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

0: आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

फिल्म परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: नशा हो गया छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का।
1: अपना घर इस फिल्म का गीत अब सुनिए सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा है, रवि का संगीत।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए। शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सबिता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई।

0: घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा काले हो, काले हो, काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। काले हो, काले हो।

रहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान बल्ले बल्ले, उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा टाली हो।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: और मंजरी क्या हाल है?
1: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
0: बिल्कुल।
1: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
0: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो

0: फेंकी गई पॉलीथीन को भी हाँ, वो चबाते रहते हैं इस गर्मी के मौसम में। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी अस्वस्थता का कारण यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
1: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहां डालते वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर दी
0: है
1: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
0: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
1: नहीं नहीं
0: है ना, ये गलत बात है ना,
1: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे मूड सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो
0: तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

0: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है, मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है, इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को

0: नहीं घर मंगवा लो। बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
1: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा, थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाड़ी नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
1: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था, लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसके गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी, जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
2: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरे अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
1: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था,

0: जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यो बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
1: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताए हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ, हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।

0: दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार, अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिख कर दीजिए इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: मैच होना जरूरी होता है, जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB या O, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक हाथ ही होता है, 1 लाख में, तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है। और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो, तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो। लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है जिसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाले उसे अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया, ये किस्सा जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी, जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है, ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए, एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है और इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है अगेंस्ट थैलेसीमिया करके, एक है एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बंबई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाए हैं, जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोहो कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना।

0: अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है, जेनेरिक दवाइयाँ जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है?
0: दुर्दय की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयां चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना, जेनेरिक्स बनाते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां हैं इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप दिखा जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपनी इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा।
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: ये वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हर एक की लड़ाई है, हर एक ने अपनी अपनी लड़नी है। आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है, कहानी फिल्म से, मैं सुनना चाहूंगा।

0: चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम।
1: देखिए कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज सीखना जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होकर उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया और उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रेटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के भी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है
0: जी जी।
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
0: जी।
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
1: देखिए कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई, तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
0: उसकी
1: तो
0: इंडिविजुअलिटी
1: जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर, वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कामया।

0: इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
1: देखिए, अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है। रोक पिक्चर का "मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी"

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहां का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा, वो जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तब ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय नहीं है, दोनों को नहीं तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी

0: वगैरह की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में। और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह हमें जानना जरूरी है क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो। तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है। और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने में थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निगलेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वैसली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सूख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

उदासियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं है, सुरमई उदास शामों में गूंजती है खामोश।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में है धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल, यादें जिनमें दर्द भी है तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

0: आज के छाए गीत में थे तलत महमूद के नगमे, फिल्मों के नाम
1: तेरी आँख के आँसू भीगा,
0: फिल्म जहां आ रहा
1: शामे गम की कसम आज गमगी है हम,
0: फिल्म फुटपाथ
1: मेरे दिल कहीं और चल,
0: फिल्म दाग

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी आज की होस्ट मधु मालवी, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे विषय जो केवल आज की जरूरत नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की पहचान भी है। दोस्तों, कहा जाता है युवा केवल देश का भविष्य नहीं होते बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत भी होते हैं। जब युवाओं के सपनों को मेहनत का साथ मिलता है तब इतिहास बनता है, और आज का भारत उसी इतिहास को लिख रहा है तकनीक, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में। लेकिन अपने विषय की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। कुछ साल पहले दक्षिण भारत के एक साधारण परिवार का एक लड़का था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, पढ़ाई के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,

वह घंटों समुद्र किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करता था और सोचता था कि एक दिन भारत भी विज्ञान और तकनीक में दुनिया के सामने नई पहचान बनाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, विज्ञान को अपना लक्ष्य बनाया और कठिन परिश्रम के बल पर देश के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाने लगा। श्रोताओं, आज हम उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जानते हैं। मिसाइल तकनीक से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सोच क्या थी? यही कि भारत का युवा यदि ठान ले तो देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बना सकता है। उनका एक प्रसिद्ध कथन आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है, जैसे सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो श्रोताओं, इसी प्रेरणा के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष क्रम आज की बात की ओर। और आज का विषय है भारत की तकनीकी प्रगति में युवाओं की भूमिका। श्रोताओं, आज भारत तेजी से तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, साइबर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। और इस प्रगति के पीछे सबसे बड़ी शक्ति भारत की युवा है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है और यही युवा नई सोच, नई तकनीक और नए विचारों के जरिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का युवा केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं है बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बन रहा है। कई युवा अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नए मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और डिजिटल माध्यमों से लाखों लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। गांव में रहने वाले युवा भी अब इंटरनेट और तकनीक की मदद से शिक्षा, व्यापार और जानकारी से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया ने युवाओं को दुनिया से जोड़ दिया है। तकनीकी क्षेत्र में भारतीय युवाओं की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की सफलता के पीछे भी हजारों युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत शामिल है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय युवा किसी से कम नहीं है। हालांकि तकनीकी विकास के साथ चुनौतियां भी आती है। आज युवाओं के सामने साइबर अपराध, मोबाइल की लत और गलत जानकारी जैसी समस्याएं भी है। इसलिए जरूरत है कि तकनीक का उपयोग सही दिशा और सकारात्मक सोच के साथ किया जाए। यदि युवा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, नवाचार और देश हित में लगाए तो भारत आने वाले समय में तकनीक के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। दोस्तों, युवा शक्ति केवल ताकत नहीं बल्कि परिवर्तन का दूसरा नाम है। और जब यही शक्ति तकनीक के साथ जुड़ जाती है तब एक नया और विकसित भारत बनता है। इन्हीं विचारों के साथ आज की बात यही समाप्त करते हैं और चलिए अब सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, गाने के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्रम इनसे मिलिए से है। चलिए, हाल ही में MBBS डिग्री प्राप्त करने वाले बैतूल के डॉक्टर श्रेयान शुक्ला से उनके अनुभव और चिकित्सा क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर दिव्यांश पल्लेवार की बातचीत को सुनवाते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्यांश पल्लेवार और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज हमारे बेहद खास अंक इनसे मिलिए में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे युवा डॉक्टर जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। हाल ही में इन्होंने MBBS की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की है और अब ये समाज की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, हम बात कर

0: रहे हैं डॉक्टर श्रेयांश शुक्ला जी की। श्रेयांश जी, आपका हमारे कार्यक्रम जीवनवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रेयांश शुक्ला है। मैंने अभी MBBS फर्स्ट ग्रेड से पास किया है।
0: जी बहुत बढ़िया, आपको आपके इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: और श्रेयांश जी, हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है। हम जानना चाहेंगे कि आपने MBBS करने का निर्णय कब और किस प्रेरणा से लिया?
2: मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा दिखाया। मेरा ऐसा जनरली MBBS करने का सपना नहीं था, लेकिन एक बार मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था डॉक्टर का, तो मेरे को उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली, जिससे मैंने फिर आगे चल के मेरे पापा मम्मी चाचा से डिस्कस किया इसके बारे में। तो उनने मेरे को बोला कि बेटा, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, हम हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो उससे मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा मिली, उत्साह मिला, जिससे मैंने MBBS का फिर नीट की तैयारी चालू की 9th में। पहले मैं सतपुड़ा वैली में था 8th तक के, फिर मैं वहाँ से माइक्रोविजन एकेडमी गया बुरहानपुर। वहाँ पे जाके मैंने मेरी कोचिंग की। पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कराड़, जो कि कोल्हापुर के पास में है। वहाँ पे फिर मैं अभी MBBS का जो एग्ज़ाम होते हैं सारे दे के आया, और 4.5 ईयर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी मैं इंटर्नशिप के लिए आगे जाने वाला हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया। और क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि यह सफ़र बहुत कठिन है और आप क्विट करना चाहते थे? अगर हाँ, तो आपने खुद को कैसे संभाला?
2: ऐसा दो बार हुआ था। एक तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरे को तब लगा कि मेरे को क्विट कर देना चाहिए, घर वालों का बिजनेस है वो देख लेना चाहिए। लेकिन पापा मम्मी चाचा बड़े पापा इन सब ने मिलकर मेरे को एनकरेज किया कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने एक और अटेम्प्ट दिया जिसमें मैं सिलेक्शन हो गया, और मतलब उसके बाद हमेशा से ही मेरे को घर वालों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ।
0: जी, यानी आपकी पूरी सफलता के पीछे आपके माता पिता का।
2: जी, और अभी सेकेंड टाइम जब फाइनल ईयर का MBBS था, पहले क्या होता था कि थर्ड ईयर MBBS में 4 सब्जेक्ट्स होते थे।
0: जी।
2: लेकिन पिछले साल से 2 सब्जेक्ट ENT और ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट हो गए थे, तो जो कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। अभी जो मेरे पेपर चले हैं वो 5 महीने तक के पेपर चले हैं मेरे लगातार।
0: जी।
2: जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मेरे को लग रहा था कि पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भी हमारे 250 स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट 25% बच्चे फेल हैं, तो लेकिन अच्छे से निकल गया मेरा MBBS।
0: जी श्रेयांश, MBBS की लाइफ काफ़ी टफ मानी जाती है, तो आपकी डेली रूटीन उस समय कैसी होती थी?
2: डेली रूटीन फर्स्ट ईयर में जाने, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब तो डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि सुबह 8 बजे उठना और फिर 9 बजे से कॉलेज होता था हमारा, जिसमें हमारे थ्योरी लेक्चर होते थे।
0: जी।
2: फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता था जिसमें डाइसेक्शन करते थे हम बॉडी के ऊपर, जिसमें लोग देहदान करते हैं उनके ऊपर हम लोग डाइसेक्शन करते थे, जिससे हमको बहुत सीख मिली। और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट जैसे फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसका होता था फर्स्ट ईयर में। फिर ऐसे ही करते करते फोर्थ ईयर तक के रूटीन सेट हो गया, जिसमें कॉलेज 9 बजे से 5 बजे तक के रहता था, फिर उसके बाद 1 घंटे का मैं ब्रेक लेता था, फिर उसके बाद मैं 9 बजे तक के पढ़ाई करता था सेल्फ स्टडी, और फिर उसके बाद खाना खा के वापस से 1 घंटे का ब्रेक लेता था, फिर उसके बाद 2-3 बजे तक के मैं पढ़ता था। तो यही मेरा रूटीन सेट हो गया था। पहले पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब रूटीन सेट हो गया तो 14-15 घंटे पढ़ाई करने में भी मुश्किल नहीं जाती थी।
0: जी, और अब आप एक डॉक्टर के रूप में पेशेंट के साथ आपका अप्रोच कैसा रहता है?
2: सबसे पहले तो हमको पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखनी है कि वो किस कंडीशन में आ रहा है हमारे पास। उसको पूरी तरीके से कंफर्टेबल रखना पड़ता है पेशेंट को, और अच्छे से सुनना पड़ता है पेशेंट, क्योंकि बहुत कभी कभी होता है कि इरिटेबल होता है, अनकॉन्शियस होता है, तो हमको उनके रिलेटिव से भी पूछना पड़ता है, चीज़ें पूछ के हमको आगे बढ़ना रहता है। और फिर उसके बाद हमको सारे साइंस एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, कि साइंस एंड सिम्टम्स मतलब क्या हुआ कि पेशेंट आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है और आप क्या पता लगा रहे हैं उसमें। तो जो सिम्टम्स होता है उसको हम बोलते हैं, जो आपको पेशेंट

0: बता रहा है कि भैया मेरे को बहुत बुखार आ रहा है या फिर मेरे को कपकपी छूट रही है। और दूसरा होता है साइन, जैसे कि आप देखे होंगे डॉक्टर लोग आँख के नीचे खींच के देखते हैं कि उनको पीलापन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको हम पैलर बोलते हैं। तो वो पैलर होता है जॉन्डिस का पता करने के लिए, एनीमिया तो नहीं है
1: जी,
0: ये सब टेस्ट पता करने के लिए इसको हम बोलते हैं साइंस।
1: शायद जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और अक्सर हम लू या हीट स्ट्रोक के बारे में सुनते हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि लू यानी हीट स्ट्रोक क्यों होता है।
0: जनरली दो टाइप के पहले तो हीट स्ट्रोक होते हैं, एक जो होता है वो क्लासिकल हीट स्ट्रोक होता है और दूसरा जो होता है वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होता है। क्लासिकल हीट स्ट्रोक जनरली बूढ़े लोगों में होता है, जो कि एल्डरली होते हैं उनमें होता है और बच्चों में होता है। और जो अपना एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक रहता है वो अपना जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर रहता है, और जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं उनके ऊपर रहता है, एथलीट्स जो हैं उनके ऊपर रहता है, ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज़्यादा ये इसके चांसेस रहते हैं हीट स्ट्रोक होने के। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और हीट स्ट्रोक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने को बूढ़े लोगों का ध्यान रखना, एक साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर ध्यान रखना, और जिनको हार्ट की बीमारी है उनका ध्यान रखना, और जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है उनका ध्यान रखना। ये जो चार लोग हैं ये सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के शिकार बनते हैं।
1: और हीट स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या होते हैं जिन्हें देखकर हम तुरंत सतर्क हो जाए, और क्या ये कभी खतरनाक भी हो सकता है?
0: हीट स्ट्रोक के लक्षण पहले मैं बताता हूँ। हीट स्ट्रोक के लक्षण में सबसे पहले आपको बुखार बहुत तेज आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपका फीवर रहेगा। फिर उसके बाद आपके इसमें CNS मतलब कि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से आपका अनकॉन्शियस हो सकते हो। और जो कि अभी आपने पूछा कि हानिकारक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से आपको कोमा हो सकता है।
1: हाँ,
0: जिसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है, इसलिए हीट स्ट्रोक। और फिर उसके बाद आपको ट्रैकीकार्डिया होता है। ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, जब आपके हार्ट रेट 120 से ज़्यादा बढ़ती है
1: जी,
0: उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं।
1: ट्रैकीकार्डिया,
0: यस। और फिर अपना ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन होता है, जो अपना ब्लड प्रेशर है जब वो 120/180 mmHg से कम हो। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कि अपना ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो अगर 110 से कम हो जाए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि अपना 60 से कम हो जाए, तो इसको अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये जब हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं हीट स्ट्रोक के मेजर सिम्टम्स रहते हैं।
1: और जैसे किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है तो वो तुरंत क्या करे, यानी फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं?
0: फर्स्ट एड सबसे पहले तो आप बर्फ़ वाले पानी से अपने आप को अच्छे से उसमें नहा लीजिए उससे, और अगर वो नहीं कर सकते आप तो स्पंज बात होती है, स्पंज लीजिए, उसको ठंडे पानी में डिप करके रखिए, फिर उससे अपनी पूरी बॉडी को साफ करिए। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये बहुत डेंजर हो सकता है। डॉक्टर अपने हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा, और आप इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप ORS पीजिए
1: जी,
0: टाइम टू टाइम पानी का अच्छे से इनटेक करिए।
1: हाँ।
0: अगर आप बाहर जा रहे हैं 1 बजे से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि आजकल हीट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को।
1: गर्मी बहुत ज़्यादा
0: है। हाँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद हाँ, लूज़ कपड़े पहनिए और लाइट कपड़े पहनिए अगर हो सकता है तो, और अपने साथ अम्ब्रेला और कैप कैरी करिए हमेशा।
1: और डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में बुखार आने पर वो हीट स्ट्रोक है या डेंगू है या मलेरिया, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, हमें बताइए।
0: देखिए, हीट स्ट्रोक में आपका जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। और जो अपना डेंगू है उसमें आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 139 डिग्री सेल्सियस जितना होगा और 40 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, मतलब कि 103 या फिर 102 डिग्री सेल्सियस का होगा। और इसमें आपने सुना होगा बोन फीवर बोलते हैं इसको, जिसमें हड्डियों में बहुत दर्द होता है। और जो अपना मलेरिया है वो पैरासिटिक होता है, मतलब कि मॉस्किटोज वगैरह की वजह से होता है डेंगू और मलेरिया। और जो डेंगू होता है वो वायरल होता है, और जो मलेरिया होता है वो अपना पैरासिटिक होता है। तो ये अपना लीवर इन्वॉल्व करता है
1: जी।
0: और उसके बाद अपना इसमें सबसे पहले आपको

0: कपकपी छूटती है, फिर उसके बाद आपको फीवर आएगा, लेकिन फिर आपका फीवर सबसाइड हो जाता है, मतलब चले जाता है, और फिर उसके बाद आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, मतलब पसीना बहुत ज्यादा आएगा। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। डेंगू में आपका टेम्परेचर 39 से कम ही रहता है हमेशा, और अपन ने लू का तो देखा ही है अभी।
1: हाँ हाँ। और डॉक्टर श्रेयांश, आगे आने वाले समय में आपका गोल क्या है मेडिकल फील्ड में?
0: मेरा गोल है, सबसे पहले तो मैं अभी एक साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करूँगा मेरे कॉलेज से, फिर उसके बाद इसी के साथ साथ मैं नीट पीजी की तैयारी करते जाऊँगा। फिर उसके बाद मेरा तीन फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि है पीडियाट्रिक्स, जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं
1: जी।
0: फिर उसके बाद दूसरी फील्ड है ऑफ्थेल्मोलॉजी, जो कि है अपने आँखों के डॉक्टर।
1: हाँ।
0: और तीसरी फील्ड है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, मतलब नाक कान गला, इसके डॉक्टर। तो इन तीन फील्ड में से मैं एक फील्ड चुनूंगा आगे चल के।
1: वो कौन सी होगी?
0: वो इन तीनों में से ही कोई सी एक चुनूंगा, ऐसे तो बहुत सब्जेक्ट हैं,
1: पर अब जब चुनना हो तो इन तीनों में से कौन सी,
0: वो तो मार्क्स के ऊपर तब डिपेंड करेगा। और
1: उसके लिए रैंक रहती होगी?
0: हाँ, उसके लिए रैंक लगती है। जैसे अपना नीट यूजी होता है एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए, वैसे नीट पीजी होता है अपना एमएस या फिर एमडी के सिलेक्शन के लिए।
1: जी जी। और अंत में हमारे जो युवा श्रोता है जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे?
0: अगर आपने एक बार अपना विजन देख लिया है तो आप अपने विजन से दूर मत भागिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बीच में ही क्विट कर देते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको कोई और दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है वही चीज़ करते करते, तो आप वो चीज़ चुन सकते हैं, लेकिन अपना जो विजन आपने एक बार देखा है उसको कभी मत छोड़िए।
1: जी, बहुत खूब। और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
1: और क्या आप रेडियो सुनते हैं?
0: जी, कभी कभी सुनते हैं, क्योंकि अभी तो बाहर हूँ तो इतना हो नहीं पाता है, लेकिन जब बैतूल आता हूँ तो अक्सर होता है कि मैं रेडियो लगा लेता हूँ और फिर सुनता हूँ।
1: तो आपको गीत संगीत में रुचि होगी?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो आज आप हमारे कार्यक्रम युववाणी के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहोगे?
0: शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो शिव जी का ही कोई गीत आप बजवा दें तो।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

इस पारंपरिक गीत से पहले आपने सुनी डॉक्टर श्रेयांश शुक्ला से उनके अनुभव पर दिव्यांश पलेवार जी की बातचीत। आशा करती हूँ कि डॉक्टर द्वारा बताए गए उनके अनुभव आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुए होंगे। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले क्रम मनी मंत्र का और आज का विषय है रोजमर्रा के खर्च में कटौती के आसान तरीके। दोस्तों, छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ी मदद बनती है अगर हम सोच

मच कर खर्च करें, बजट बनाकर चलें और फिजूल खरीदारी से बचें तो काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं। बाहर खाने की बजाय घर का खाना अपनाएं, ज़रूरत ना होने पर बिजली के उपकरण बंद रखें और ऑनलाइन शॉपिंग केवल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। याद रखिए, समझदारी से बचाया गया पैसा ही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, इसी संदेश के साथ मनीमंत्र यहीं समाप्त होता है। चलिए अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोता वहां ये जानते हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर सुनिएगा पंकज उदास की आवाज में कार्यक्रम गोधुली। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:30 पर। शाम 6:50 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन और कव्वाली का सम्मिलित स्वरूप कार्यक्रम सबरस।

सामूहिक चर्चा के साथ शुरू होगा हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और सामूहिक कृषि चर्चा होगी उन्नत बीज चयन कैसे करें। इस विषय पर श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा बातें खेती किसानी की। साथ ही कार्यक्रम में होगी भेंटवार्ता, सुनेंगे लोक संगीत, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। रात्रि 8 बजे होगा कुछ बातें कुछ गीत। हमारा बैतूल ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:20 पर। आज इसमें जनगणना 2027 पर केंद्रित अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम से और मास्टर ट्रेनर विनोद कुमार अडलक और तकनीकी प्रभारी आशीष वागद्रे से बातचीत होगी सचिन भागवत जी की। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत सुनिएगा रात 10 बजे। रात 10:30 सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगे फैजल कपाड़िया। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इसमें कलाकार हैं अनूप जलोटा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य किया जाएगा। सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविन्द्र सिंह, क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश, विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141-234-722 और 231-944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 14 मई 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 234-722-231-944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। गोधूली कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा को।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इसमें गायक कलाकार हैं अनूप जलोटा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इसमें कलाकार थे अनूप जलोटा। ये आकाशवाणी बैतूल है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा है शिवन रिजवी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और फिल्म का नाम है हमसाया।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनेंगे मेरा साया, इस फिल्म से आवाज लता जी की, बोल राजा मेहदी अली खान के, संगीत मदन मोहन साहब का।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे मीर तकी मीर का लिखा हुआ, संगीत खयाम साहब का, आवाज लता जी की और फिल्म का नाम है बाजार।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अंतिम गीत आप सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। गीत को लिखा है जानिसार अख्तर ने, संगीतकार खयाम साहब, और फिल्म का नाम है नूरी।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं गीत गजल भजन और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में पहले सुनिए ये गैर फिल्मी गीत, आवाज दलेर मेहंदी की।

सबर कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं ये कवाली। कव्वाल हैं वडाली बंधु।

वडाली बंधू की गाई इस कवाली के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। चंद लम्हों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव कल, जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पर निवेश में होगा मंथन। देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान। और प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोनू नेशनल पार्क में विलुप्त किए 2 मादा चीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में

0: आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।
1: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, ये संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देशभर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भोपाल में कल इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित केएफ रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
2: मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे डीजी पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, एसपी के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है।
0: भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण BIS मानक, खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोटोकॉल फॉर लोकल को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के

0: तहत 1763 करोड़ रुपए की लागत से 2117 किलोमीटर लंबे 973 सड़कों का निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती में चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कुरू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कुरू नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। सहकारिता मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के सोयत कला में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। नीमच जिले के जावत में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावत द्वारा संवानिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर रामघाट पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूँ खरीदी होगी। कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांग द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया और सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में जनगणना कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को और बहनों को प्रहलाद भूमरकर का राम राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम ग्राम सभा में। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं और शासन की जो नई नई योजनाएं आती है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारा आज का भी कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमें हमारी फसलों और पशुओं का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इस समय शादियाँ भी बहुत हो रही है और वहाँ हमें जाना ही पड़ता है, तो ऐसे में हमें अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है और खाने में फल सलाद सब्जियों का प्रयोग करें और भरपूर आराम करें, अपनी नींद पूरी लें और मसालेदार खाना खाने से बचिए। ये तो कुछ सावधानियां हमारी गर्मी के हिसाब से थी। चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं और करते हैं आज की बात, जिसमें हम बात करते हैं आज के दिन के खास महत्व की। तो किसान भाइयों, जैसे कि आज 11 मई है और 11 मई को हर साल हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे देश

में तकनीकी क्रांति और उसको पावरफुल बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि आज 11 मई को राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो स्थित पोखरण नामक जो स्थान है, जो मुख्य रूप से भारत के परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, और भारत ने यहाँ पहली बार 1974 में और दूसरी बार 1998 में अपना सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। जब भारत ने दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और दो दिन बाद देश में और दो परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति है। इसी की याद में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, और इसके अलावा और कई अहम तकनीकी क्रांति इस दिन संभव हुई, जैसे कि हंसा 3, इसने पहली बार अपनी उड़ान भरी। भारत के स्वदेशी विमान हंसा 3 ने आज ही के दिन 11 मई को पहली बार अपनी उड़ान भरी थी, और हंसा 3 जो है ये एक 2 सीटों का छोटा हल्का विमान था, जिसका इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए, हवाई फोटोग्राफी के लिए, निगरानी और पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए होता है। इसके अलावा त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी 11 मई 1998 को ही किया गया था। इसीलिए 1999 से हर साल 11 मई को यह दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने हेतु कई तरह की गतिविधियां और समारोह का भी आयोजन होता है, जैसे पुरस्कार समारोह। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों को स्वदेशी तकनीकों के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इस दिन प्रदान किए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर प्रदर्शनियां लगाई जाती है, और इसी दिन हम अपने 11 मई 1998 को जो हमने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए थे और पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 की जो उड़ान हुई थी, इसको हम इस दिन याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी हम इस दिन करते हैं। इस दिन देश में नई तकनीकों, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। तो मुख्य रूप से यह दिन प्रयोगशाला से व्यवसाय तक के सफर को प्रोत्साहित करने और भारत को एक तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात और आज के दिन का खास महत्व। और किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं श्याम बर्रे और साथियों की आवाज में ये लोक भजन।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे श्याम बर्रे और साथियों की आवाज में लोक भजन। और कार्यक्रम में अब समय है कृषि चर्चा का, जिसमें विषय है उन्नत बीजों का चयन कैसे करें। किसान भाइयों, बेहतर फसल उत्पादन के लिए किसान भाइयों को अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। उन्नत बीजों का चयन कृषि में सफलता और बंपर पैदावार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में लगातार उभरते नई तकनीकों के चलते आज खेती की दशा और दिशा दोनों में सुधार देखने को मिल रहा है। इससे न केवल उन्नत और आधुनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार हुआ है। उच्च गुणवत्ता प्रमाणिक बीजों के उपयोग से ही लगभग 20% के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्वालिटी बीजों से न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ती है, बल्कि खेतों में लगने वाले खरपतवार भी कम किए जा सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, बीजों का चुनाव करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और कुछ चीज़ों का ध्यान हम प्राचीन तरीकों से रखते भी आ रहे हैं। जैसे कि स्वस्थ बीजों को पहचानने के लिए बीजों को पानी में भिगोना एक प्रभावी तरीका है। इससे जो स्वस्थ बीज होते हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के और जो खोखले बीज होते हैं ये पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। इन ऊपर तैरते हुए बीजों को हमें अलग कर देना चाहिए, और जो भारी बीज जो नीचे बैठे हैं इन्हें हमें उपयोग में लेना चाहिए। अच्छे बीजों के चयन के लिए और जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनमें प्रमुख बातें यह है कि एक तो हमें शासन द्वारा प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। बीज खरीदते समय तुलनात्मक रूप से उसकी गुणवत्ता की जांच करना चाहिए, और विश्वसनीय दवाई विक्रेता, स्टॉकिस्ट या एग्रोवेट की दुकानों से ही किसान भाइयों को बीज खरीदना चाहिए। बीज मिलावट युक्त, कटा हुआ या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटे बीज

बीजों में अंकुरण और पोषण की क्षमता कम हो जाती है। बीज छोटा या सूखा भी नहीं होना चाहिए और बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। उन्नत बीजों का उत्पादन वैज्ञानिकों की देखरेख में ही हमें करना चाहिए और एक्सपर्ट की सलाह से ही बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। बीजों का चयन करते समय हमें अपनी बाजार की मांग, क्षेत्रीय अपना मौसम और अपनी मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार ही हाइब्रिड या उन्नत किस्म के बीजों का चयन अपन कर सकते हैं, जो भविष्य में आपको अधिक से अधिक लाभ देने का काम कर सकती है। अपने जो पुराने बीज है उनको बदलते हुए प्रमाणित बीजों से बुआई करें, जिससे फसलों में वृद्धि होगी और लगभग 20% का उत्पादन हमें अधिक बढ़कर मिलने की संभावना।

0: योग का चयन अपन कर सकते हैं जो भविष्य में आपको अधिक से अधिक लाभ देने का काम कर सकती है। अपने जो पुराने बीज है उनको बदलते हुए प्रमाणित बीजों से बुआई करें जिससे फसलों में वृद्धि होगी और लगभग 20% का उत्पादन हमें अधिक बढ़कर मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमें जब भी बीज खरीदना हो तो हमें पैकेट पर उसके उत्पादन की तारीख, उसके अंकुरण का प्रतिशत और एक्सपायरी डेट अवश्य रूप से देखना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ जानकारी उन्नत बीजों के चयन के संबंध में, और अब कार्यक्रम में समय है आज की भेंटवार्ता का। तो चलिए आपको सुनाते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मृदुला सिन्हा से की गई बातचीत, जिसमें बातचीत का विषय है गर्मियों में पशुओं की देखभाल। राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद भूमरकर और आज हमारे साथ उपस्थित हैं जिला पशु चिकित्सालय की अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला सिन्हा, जिनसे चर्चा करेंगे हम आज के विषय गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम किसानवाणी में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानेंगे हम गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या उपाय करें।
1: जैसा कि आपके हिसाब से जो आपने पूछा है कि पशुओं की देखभाल कैसे करें, तो पशु और आदमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हो। जैसा प्रोटेक्शन अपन लोग लेते हैं, जैसे मान लो कूलर या ठंडा पानी
2: जी,
1: या शेड
2: जी,
1: वैसे ही सेम एनिमल में भी अपने को पशुओं का ध्यान रखना पड़ता है
2: जी।
1: अब जैसे ग्रामीण भाइयों के लिए क्या करते हैं, ये लोग एक छपरा अकेला डाल देते हैं
2: जी।
1: और गर्म हवा जो लू लगती है वो तो आती है, गर्म हवा है, अपन लू बोलते हैं उसको
2: जी।
1: उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि जिस तरफ से हवा आ रही है वहां पर आप जो पुरानी बोरियां हैं उनको सिले, उसका एक पर्दा बनाएं और उसमें पानी आप सींचते रहें, तो ये एक टेम्परेरी कूलर जैसी हवा देगा।
2: अच्छा,
1: चूंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जो अचानक ही चेंजेस आ रहे हैं वेदर में, कभी ह्यूमिडिटी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, तो दो चीजें हैं, एक तो होता है हीट स्ट्रोक जिसको अपन बोलते हैं लू लगना, और एक होता है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस होता है कि जब बादल छाए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस, तो हीट स्ट्रेस जो होगा वो जब बादल होंगे और आर्द्रता बढ़ेगी और पसीना जैसे कि अपने को निकलता है ऐसे जानवर में निकलता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो पसीना सूखता है, लेकिन हीट स्ट्रेस में पसीना नहीं सूखता, तो ये आएगा आपका हीट स्ट्रेस।
2: अच्छा।
1: तो इसमें भी टेम्परेचर अचानक जानवर का बढ़ जाएगा, जानवर पेंटिंग करेगा, पेंटिंग बोले तो जिसको हाफना कहते हैं, जानवर का हाफना।
2: अच्छा।
1: तो बिल्कुल ऐसा हाफता है जानवर, तेज तेज सांस लेता है जैसे अपने डॉग हाफते हैं, तो ये पेंटिंग बोलते हैं उसको अपन, तो ये पोजिशन होती है। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसका ध्यान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार आप पानी डालते रहो तो एक कूलर जैसी हवा आएगी
2: जी।
1: जो अपन ने कर्टेन बनाया है, जो पर्दा बनाया है
2: जी,
1: बोरियों का
2: जी।
1: या आजकल स्प्रिंकलर आ गए हैं, स्प्रिंकलर लगा दिया आपने ऊपर तो वो पानी लगता रहता है, जैसे कि पेड़ों में पानी जाता है ना, ऐसे स्प्रिंकलर होते हैं।
2: अच्छा।
1: तो वो ठंडा रहेगा उनका कोठा
2: जी।
1: और बार बार पानी जानवर का बदल के रखो, ताजा पानी रखो, एक ये तरीका हो गया। तीसरा, जैसे मान लो जानवर, ये मैंने आपको गर्मियों के से कैसे देखभाल करना है और क्या रखना चाहिए ये उपाय मैंने आपको बता दिए।
0: और मैम, इससे गर्मियों से किस तरह की बीमारियां सामने आती है और उनके जैसे उपचार संबंधी किसानों को किस तरह से जागरूक रहना चाहिए और क्या उन्हें कहां पे लेके जाना चाहिए उपचार हेतु?
1: जैसा कि गर्मी की जो गर्मी में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो अधिकतर, एक तो हीट स्ट्रेस हो गया आपका, सेकेंड हो गया आपका गोचड़ी और पिस्सू, इससे जानवर बहुत ग्रसित होता है। शरीर पे गोचड़ियां इतनी होती हैं और ये गोचड़ियों का जो नेचर होता है वो रात्रिचर होता है, यानी रात, दिन में आपको नहीं दिखेंगी कई बार बॉडी पे
2: जी।
1: रात में जो कोठा है वहां पे जो दरारें हैं वहां पे छिप जाती हैं और आके जानवर की पूरे बॉडी पे इकट्ठी हो जाती हैं और इसके बाद खून चूसना शुरू कर देती हैं। खून चूस

0: से क्या होता है, एक तो एनीमिया हो जाएगा, दूसरा जो आप दे रहे हो जानवर को खाने पीने की चीजें वो उसके शरीर को नहीं लगेंगी, ये कारण हो गया। तीसरा, इनसे होने वाली बीमारियां बहुत होती हैं, गोचड़ी पिस्सू के काटने से कम 4-5 टाइप की बीमारियां होती है।
1: अच्छा।
0: तो कई बार तो ये होता है कि ओनर को, पशु मालिकों को ये समझ में ही नहीं आता कि जानवर को हुआ क्या
1: जी।
0: क्योंकि ये जब काटते हैं तो जैसे अपने को मलेरिया पैरासाइट होता है ना, मलेरिया का मच्छर
1: जी,
0: सेम समझ लो आप, ऐसे ये गोचड़ी पिस्सू होते हैं। तो इनके काटने से जानवर का टेम्परेचर 104, 105, 106 तक जाता है। तो कई बार तो जानवर को ट्रीटमेंट करने का मौका भी नहीं दिया जाता
1: जी,
0: और ओनर को एक दो दिन तो समझ में ही नहीं आता। तो मेरा कहना यह है कि जब भी जानवर हाफ है या तेज तेज सांस ले या आपको कान पकड़ के आपको उसकी गर्माहट का पता पड़ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जानवर को टेम्परेचर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप नजदीकी भी कोई भी जो डिस्पेंसरी है या हॉस्पिटल है वहां कॉन्टेक्ट करें और उसका इलाज शुरू तुरंत करवाएं।
1: और मैम, जैसे गर्मियों के सीजन में जैसे अपन लोग सोचते हैं कि अपने को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लाइट कलर का पहनना चाहिए, तो जैसे भैंसे तो अक्सर पूरी काली ही होती है, तो क्या उनपे भी इससे गर्मी का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ता है गर्मी का। उनके लिए अपने को जैसे पानी इस तरह से रखना चाहिए जैसे आपके गाँव में नदी हो या तालाब हो या डोबर डाबर हो जिसमें कि जानवर अंदर घुस के और टेम्परेचर मेंटेन करें। तो ये बफेलो के लिए, जो भैंस है उनके लिए ये तरीका सही रहता है। बाकी आप जैसे क्रॉस ब्रीड एनिमल है, जर्सी, HF, ये ठंडे देश के जानवर हैं जो अपने इंडिया में आए हैं, तो इनको गर्मी बहुत लगती है। जरा भी टेम्परेचर शूट अप होगा तो ये बिना बात के हांफने लगेंगे
1: जी।
0: तो ऐसे में आप सुबह शाम इनको नहला सकते हैं, सुबह और शाम, दोपहर में नहलाएंगे तो लू लगने के पूरे पूरे चांसेस।
1: और मैम, ये जो गर्मी से पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है, क्या ये भी प्रभावित होती है? इनसे कैसे बचेंगे?
0: बिल्कुल सही बात है ये कि गर्मी से पशुओं का जो प्रोडक्शन है वो अचानक ही कम होता है
1: जी।
0: तो ऐसे में वो ये कि जहां आपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जानवर का, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर इनका 100 से 102 तक होता है, तब तक तो ये इनका जो दूध देने की कैपेसिटी है वो बराबर होती है
1: जी।
0: लेकिन इससे कम, इससे ज्यादा हुआ तो असर पड़ेगा, जानवर दूध नहीं देगा। और आपको एक चीज और मैं बता दूं आपके माध्यम से पशु पालकों को
1: जी,
0: कि कोई भी बीमार अगर जानवर है तो ये सबसे पहले दूध कम करते हैं
1: जी।
0: तो दूध कम करने का कारण अकेला आप गर्मी नहीं समझ सकते
1: जी,
0: थनों में होने वाली बीमारियों से भी दूध कम होता है।
1: अच्छा।
0: तो थन से दूध निकालो आप चारों थन का, उसको चेक करवाओ हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में, उसके आधार पे ही आप अगला ट्रीटमेंट करो। क्योंकि ये बात सही है कि गर्मी से होता है, लेकिन हमेशा गर्मी से होता है ये मान के आप नहीं चल सकते
1: जी।
0: या आप जो चारा भूसा पानी दे रहे हैं जानवर को, कैसा दे रहे हैं उसको, वो भी डिपेंड करता है उसकी यील्ड पे। क्योंकि अगर आप चारा भूसा पानी अगर अच्छा प्रॉपर देंगे या मल्टीविटामिन देंगे या कैल्शियम देंगे तो दूध को आप गर्मी में भी मेंटेन करके रख सकते हैं।
1: अच्छा। अब मैम, चारे की बात निकली है, तो जैसे गर्मियों में पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई किस तरह से उनके हरे चारे की कमी को पूरा करेंगे?
0: देखो, ये हरा चारा नहीं मिल पा रहा है ये तो बात सेकेंडरी हो गई, लेकिन जो लोग जानवर पालते हैं वो व्यवस्था जरूर करके रखते हैं, बरसीम, ल्यूसन, इस टाइप का कल्टीवेट करके रखते हैं जानवर के लिए, जिससे कि साल भर उनको जानवर को हरा चारा मिले। क्योंकि आजकल 1 या 2 लीटर वाले जानवर तो होते नहीं है
1: जी,
0: 8 से 10 लीटर तक के जानवरों को पाला जाता है।
1: अच्छा।
0: और पुरता भी वही है पशुपालकों को, तो बरसीम या लूसर्न या जो भी आप देना चाहें चारा, उसके लिए आप पैदावार अपने आजू बाजू जो भी जगह हो, खाली जगह, वहां पर आप ये कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं कुछ 2-3 जो मिस्टेक करते हैं पशुपालक, उनको भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो नया भूसा होता है
1: जी,
0: उस नए भूसे को डायरेक्ट जानवर को नहीं देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसको पानी में 15-20 मिनट डालो, फिर निचोड़ के सानी बना कर दो, क्योंकि जो नया भूसा रहता है उसमें रहते हैं ऑक्सीलेट
1: जी,
0: और जैसे

0: जैसे ही वो जानवर 2-4-5 दिन खाता है, इसके बाद वो दस्त करना शुरू कर देता है
1: जी।
0: तो जैसे ही दस्त शुरू होते हैं तो जानवर खाना पीना भी बंद कर देता है, प्लस जानवर का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है जी। ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट कई बार क्या करते हैं, हाँ दूसरी बात जैसे कि मैंने देखा है, मैं कभी कभी विजिट पे जाती हूँ तो गांव में मैंने देखा कि ये लोग सोयाबीन का भूसा देते हैं
1: जी।
0: तो ये सोयाबीन का भूसे के शुरू शुरू में तो जानवर खाता है बड़े चाव से, धीरे धीरे वो जानवर दुबला होना शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो ये जो सोयाबीन का भूसा है ये दोनों जानवरों को इफेक्ट करता है, दोनों जानवर बोले तो दूध वाला जानवर और काम वाला जानवर, काम वाला यानी बैल,
1: बैल
0: जिनसे आप खेती बाड़ी का काम लेते हो
1: जी।
0: तो ये क्या करता है, सोयाबीन का भूसा कैल्शियम, बॉडी का कैल्शियम और बॉडी का पानी उसको एब्जॉर्ब करता है
1: जी।
0: तो जब ये कैल्शियम लेवल डाउन करता है तो जानवर बैठ जाता है, दूध उसका अचानक कम हो जाता है और जो उसका पेट होता है वो ठस जाता है, तो जानवर बगुल भी नहीं कर पाता। ऐसे ही अगर बैल में ये देते हैं तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ये बैल में, काम वाले जानवर में, और जानवर धीरे धीरे दुबला होता जाता है और 5-6 महीने बाद ये होता है हालत कि जानवर उठने की कंडीशन में भी नहीं होता
1: जी।
0: तो आपके माध्यम से मैं पशु पालकों को बोलना चाहती हूँ कि सोयाबीन का भूसा ना दिया जाए
1: जी। तो मैं अब हमारी वार्ता बिल्कुल अंतिम दौर में है, तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: जानवर को एक तो छायादार स्थान पर रखें, धूप में चरने के लिए ना छोड़ें
1: जी।
0: दूसरी बात, अगर आप चरने के लिए छोड़ रहे हैं तो सुबह 9 बजे तक आप चरवा के और लेकर आ जाएं जानवर को
1: जी।
0: या फिर शाम के 5 बजे के बाद लेके जाएं, जिससे लू से बचें जानवर। धूप में जैसे लाने के बाद इसको कुछ देर छाया में बांधें, फिर इसके बाद पानी पिलाएं, एकदम तुरंत नहीं पिलाएं। जैसे कि अपन लोग दौड़ते हैं, दौड़ के अपन पहले अपनी नॉर्मल सांस को करते हैं इसके बाद पानी पीते हैं, सेम जानवर के साथ भी वो है।
1: अच्छा।
0: और सुबह और शाम को नहलाने का प्रयास करें आप
1: जी।
0: और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पशुओं को जहां बांधते हैं वो छायादार और हवादार हो
1: जी।
0: पशुओं को हरा चारा खिलाएं, अगर आप हे और साइलेज बना सकते हैं तो आप डिपार्टमेंट की सलाह लेके आप ये तैयार कर सकते हैं
1: जी।
0: अगर संभव हो तो डेयरी शेड अगर है तो वहां कूलर और पंखे का भी आप यूज कर सकते हैं
1: जी।
0: जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर के समय जहां पर खिड़कियों दरवाजे हैं वहां जूट या टाट से ढक दें और समय समय पर पानी डालें
1: जी,
0: जिससे कि कूलर जैसी हवा आए। अगर किसान सक्षम है तो स्प्रिंकलर या फवारा लगा सकते हैं आप। पशुओं को पीने के लिए ठंडा पानी बार बार समय समय पर उपलब्ध करवाएं आप
1: जी।
0: और भैंसों को अगर पानी की सुविधा है आपके यहाँ तो भैंस को 3-4 बार नहलाएं, गाय को कम से कम 2 बार सुबह शाम। अगर तालाब है तो बहुत ही अच्छी बात है भैंसों के लिए, जिससे वो कुछ देर के लिए उसमें डूबी रहे, जिससे कि उनका तापमान जो शरीर का है वो मेंटेन हो। साथ में ही पशुओं को पर्याप्त मात्रा में जगह होना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप कई बार 10-10 जानवर एक ही जगह बांध देते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे बांधें, जिससे कि गर्मी नहीं लगे उन्हें
1: जी।
0: और जो पशु जहां पर इनको रखते हैं आप शेड में, तो छत की ऊंचाई अधिक से अधिक रखें।
1: चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी सलाह दी हमारे किसान भाइयों को, हमें पूरी आशा है कि इससे उन्हें जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे पशु चिकित्सक डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी से की गई बातचीत, जिसमें विषय था गर्मियों में पशुओं की देखभाल। और कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं अभिराम नर्रे और साथियों जी की आवाज में ये लोक भजन।

कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा और सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविंद्र सिंह क्षेत्रीय अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान चाहते हैं वे दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141234722 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 234722 या 231944 और बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। किसान भाइयों, अभी हाल में जो अब हमारे यहाँ का जो मौसम चल रहा है, अभी पिछले महीने हमने अप्रैल में देखा कि काफ़ी ओलावृष्टि और बारिश के कारण फसलों का नुकसान हुआ और कई जगह की फसलें खराब हुई। ऐसे में जो मौसम विभाग है उसके द्वारा कुछ चेतावनियाँ भी जारी की गई है, जिसके अनुसार मई के मध्य में मौसम बहुत गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है, जिसमें तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है और बारिश की उम्मीद नहीं के बराबर है या नहीं है, जिससे फसलों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में अपनी फसलों में नमी बनाए रखने के लिए, इस धूप की गर्मी से अपनी फसलों को बचाने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी फसल में सिंचाई की व्यवस्था करें और पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करें और अपनी फसलों को गर्मी से बचाने का प्रयास करें। और किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय है मंडी भाव का, लेकिन मंडी भाव हमें इस समय प्राप्त नहीं हुए हैं, तो दीजिए अनुमति, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। तो दीजिए अनुमति प्रहलाद भूमरकर को। राम राम, जय जवान जय किसान।

आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे रमेश पंत का लिखा हुआ, संगीत राहुल देव बर्मन का है, आवाज रफी साहब की, और फिल्म का नाम है अधिकार।

नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। वो और होंगे जिन्हें तेरा चेहरा पसंद है, वो और होंगे जिन्हें तेरा चेहरा पसंद है, हमें तो तेरी आवाज से भी मोहब्बत है। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और आशा भोसले की युगल आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य किया जाएगा। सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविंद्र सिंह, क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश, विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 14 मई 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141 234722 और 231

944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 14 मई 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 2347222 यानी 234-722 और 231944 यानी 231-944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आपकी कसम फिल्म का ये गाना, बोल आनंद बख्शी के संगीत, राहुल देव बर्मन का।

कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता जी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं रोशन साहब और फिल्म का नाम है ममता।

लता जी के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हमारा बैतूल।

0: हमारा बैतूल।
1: हमारा बैतूल। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहे हैं और वो विषय है जनगणना 2027 का प्रथम चरण। ये जनगणना क्या है, क्यों है और किस लिए ये आयोजन किया जा रहा है इतना महती, इस बारे में जानकारी देने आज हमारे साथ बैतूल के अतिरिक्त जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद कुमार अडलग जी और साथ ही तकनीकी प्रभारी जिला जनगणना कार्यालय श्री आशीष वागरदे जी हमारे साथ हैं। आप सबका हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और विनोद जी, आप चूंकि मास्टर ट्रेनर हैं और जनगणना 2027 इस बार पहली बार डिजिटली आयोजित की जा रही है तो इसमें ट्रेनर का एक महत्वपूर्ण रोल भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो जनगणना 2027 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: निश्चित रूप से यह जो जनगणना 2027 है जिसका कि अभी वर्तमान में हमारा पहला चरण चल रहा है जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। अब मूल जो बात आती है कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हर एक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने ये देखा है कि इसके पूर्व हमने 2011 में जनगणना की थी और अब हम लगभग 16 वर्ष बाद यह जनगणना कर रहे हैं। तो मैं एक मोटे तौर पर आपको इस जनगणना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में यदि बताऊं, सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है कि जनगणना के माध्यम से ही हम हमारे देश के विकास के लिए या यूं कहे कि देश के अच्छे भविष्य के लिए एक सटीक नीतियां बनाते हैं। दूसरी बात, हम ये देखते हैं भारत जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत ही धनी देश है।
1: बिल्कुल,
2: यदि हमारे पास इस जनगणना के माध्यम से जो हमारे संसाधनों का आवंटन है और संसाधनों के आवंटन का वितरण कैसे किया जाए जिससे कि देश की सभी जो नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक इन संसाधनों का आवंटन सही रूप में हो, इनकी प्लानिंग करने के लिए यह जनगणना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा,
2: मैं यदि इसके तीसरे उद्देश्य की बात करूं तो पिछली जो 2011 में हमारे यहाँ पर जो जनगणना हुई है, हम वहां से आज तक के ये जो 16 साल का जो हमारा सफर है उसकी प्रगति का हम आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में आज हम इस 16 वर्षों के बाद कहाँ है, किस स्थिति में है।
1: बिल्कुल,
2: मैं आपको इसकी चौथा इसका यदि मुख्य उद्देश्य बताऊं तो जितनी भी हमारी जो निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों के जो परिसीमन होते हैं, उन परिसीमनों में जनगणना का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर हम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हो, चाहे वह विधानसभा हो चाहे वह संसदीय चुनाव हो, इन सभी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इस जनगणना के डेटा।
1: भारत में जो जनगणना 2027 है इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किस तरह का है, कुछ इस बारे में भी हमें बताएं।
2: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसके पूर्व तक जब हम जो भी जनगणना करते थे उसमें हम लोग कागजी अनुसूचियों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हम डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आज यह पहली जनगणना है जो डिजिटल माध्यम से हो रही है और अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 1 मई से लेकर 30 मई तक जो प्रथम चरण चल रहा है उसमें HLO ऐप के माध्यम से हमारे जो प्रगणक और पर्यवेक्षक उसी ऐप के माध्यम से अपना डाटा एकत्रित कर रहे हैं और आगे की भी जो हमारी दूसरे चरण की भी जो जनसंख्या की गणना होगी वह पूरी तरीके से डिजिटलाइज होगी। तो पहले की तुलना में यदि इस जनगणना में आप देखें, तो जो हमारा इस डिजिटलीकरण के माध्यम से बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जनगणना कर रहे हैं।
1: भारत में, हमारे देश में इस जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, कुछ इसका भी बैकग्राउंड हम आपसे जानते हैं।
2: बिल्कुल सर, वास्तव में यदि हम देखें तो भारत की जो जनगणना है वो हमारी 16वीं जनगणना है।
1: अच्छा,
2: यदि हम देखें इसको तो ब्रिटिश काल में यह जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन वह जो जनगणना थी वह गैर समकालिक थी।
1: अच्छा,
2: जो हमारी नियमित जो जनगणना है वो सन 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में पूर्ण और व्यवस्थित की जा रही है, यानी पूरे देश में एक समय पर ये जनगणना हो रही है। और जो हमारी अंतिम जो नियमित जनगणना थी वो 2011 की हुई थी। तो यदि हम स्वतंत्रता के बाद से देखें तो ये हमारी 8वीं है जो नियमित और पूर्ण समकालिक। वैसे यदि हम देखें तो जो भारत की जनगणना है वो 16वीं जनगणना होगी।
1: अच्छा, और इस जनगणना 2027 के लिए शुभंकर क्या बनाए गए हैं, क्या माने गए हैं?
2: हमारी जो जनगणना है, आपने देखा होगा कि हमने एक लक्ष्य रखा है सन 2047 में विकसित भारत होने का
1: जी।
2: उसमें हमारे इस जनगणना का जो शुभंकर है उसमें हमारे ये प्रगति, जिसमें एक हमारे पास बहुत अच्छा इनका

0: एनिमेशन वीडियो भी है
1: जी,
0: और एक महिला प्रगणक उस प्रगति के माध्यम से हमारी इस जनगणना को समझाती है, और दूसरा है विकास।
1: अच्छा,
0: जो कि हमारे एक पुरुष प्रगणक है
1: जी।
0: तो इन दो शुभंकर को ही मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रगति और विकास इस जनगणना का मूल आधार है।
1: बिल्कुल,
0: और निश्चित ही आज जिस तरीके से हमारा जिला या पूरा प्रदेश, मैं पूरे जिला प्रशासन के साथ में रहता हूँ, जिसमें हमारे जिले के जो प्रमुख है आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, हमारे जिला जनगणना अधिकारी मैडम के मार्गदर्शन में, और मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे अतिरिक्त जनगणना अधिकारी आदरणीय गौतम सर के माध्यम से, जो कि अथक परिश्रम और फील्ड में जाकर इस जनगणना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं पर्टिकुलर अपने जिले की बात करूं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रही है।
1: बहुत अच्छी बात है आशीष जी, आप तकनीकी प्रभारी हैं और इस कार्य को काफी नजदीक से आप देख भी रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 की जनगणना इससे पहले जो जनगणना हुई थी उससे किस तरह से अलग है।
2: जैसे अडक सर ने बताया कि ये डिजिटल रूप से जनगणना हो रही है, इस हेतु सीडेक पुणे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा कुछ टूल्स बनाए गए इसमें, जैसे HLO ऐप हो गया सर, जो प्रगणक भी इंस्टॉल करेगा और पर्यवेक्षक भी इंस्टॉल करेगा, जिसमें जो डाटा एंट्री होगी प्रगणक के द्वारा की जाएगी और उसकी सटीकता से वेरिफिकेशन जो होगा पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाएगा
1: जी।
2: और इसके अलावा सर एक पोर्टल है CMSS पोर्टल, जो डाटा प्रगणक और पर्यवेक्षक के द्वारा सिंक किया जाएगा वो उस पोर्टल पे प्रदर्शित होगा, और उसकी मॉनिटरिंग जो होगी चार्ज अधिकारी एवं जो जिला जनगणना अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
1: अच्छा, ये जो पिछली जनगणना शुरू हुई थी हमारे बैतूल जिले में, तो उसकी जनसंख्या के आंकड़े क्या थे जो 2011 के सापेक्ष?
2: सर 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कुल जनसंख्या अपने यहाँ की 1,575,000 लगभग थी, एवं जिसमें पुरुष जनसंख्या 7,99,000 एवं जो महिला जनसंख्या है 7,76,000 थी, और लिंगानुपात सर 971 था।
1: अच्छा
2: जी,
1: और अब हम इस जनगणना के लिए जो बैतूल जिले में तैयारियां हैं कुछ उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये कार्य संपन्न किया।
2: सर बैतूल में कुल 22 चार्ज है, जिसमें 11 ग्रामीण चार्ज एवं 10 नगरी चार्ज, और एक सर स्पेशल चार्ज है जो एयरफोर्स स्टेशन आमला है।
1: अच्छा,
2: वो स्पेशल चार्ज है।
1: और ये जो जनगणना है इसकी प्रविधि क्या रहेगी, किस तरह से ये एक्चुअल में की जाएगी?
2: सर हमारे यहाँ जो जिला है उसमें कुल 2802 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाया गया है सर
1: जी।
2: हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में उसमें प्रगणक का अलॉटमेंट है और 6 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक को अलॉट किया गया है।
1: अच्छा,
2: मॉनिटरिंग के लिए जो प्रगणक हर एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जाएंगे वहां पर डाटा एकत्रित करेंगे
1: जी,
2: और उसको सिंक करेंगे, उसके बाद में जो पर्यवेक्षक है उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ाएंगे सर।
1: अच्छा, अब हम आपसे आगे जानना चाहेंगे विनोद जी की जो जनगणना 2027 में प्रगणकों को आम जनता से किस तरह के प्रश्न पूछना है।
0: इस प्रथम चरण में कुल मिलाकर हमारे जो है अंतिम जो 34वां प्रश्न है वो मोबाइल सहित करके 34 प्रश्न है
1: जी।
0: मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं कि हमारे जो प्रश्न है इसमें एक तो है कि बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी है, जैसे पेयजल की व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है
1: जी,
0: बिजली के बारे में पूछा जा रहा है इसमें, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, शौचालय की क्या उपलब्धता है, दूसरा यदि हम देखें कि एक परिवार के पास में क्या क्या परिसंपत्तियां होती है, उसमें क्या उस परिवार के पास साइकिल उपलब्ध है
1: जी,
0: मोटरसाइकिल है या कार है, ऐसी बहुत ही बेसिक्स सामान्य जानकारी हम लोग पूछ रहे हैं। और मैं यहाँ आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस जनगणना में हमें किसी भी जानकारी को जब हम पूछ रहे हैं
1: जी
0: तो हमें किसी पेपर की आवश्यकता नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर।
1: अच्छा,
0: कोई हमें उनकी पेपर नहीं लेना है कि उन्होंने कहा कार है तो आपके नाम पे है या नहीं है, हम केवल उपलब्धता की बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जनगणना 2027 में आम नागरिकों की क्या भूमिका है।
0: मैंने आपको एकदम प्रारंभ में ही बताया था कि यह जो 2027 की जनगणना है वो देश के साथ साथ हर व्यक्ति से

0: जुड़ी हुई है
1: जी,
0: और इसलिए महत्वपूर्ण है। बस एक बात है कि बहुत आसान से प्रश्न प्रगणक आपसे पूछने आएगा
1: जी,
0: और उन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही सहज रूप से उनको आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि ये जो आप जो सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराओगे यह आपके साथ साथ देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारे हर नागरिक का इस 2000 जनगणना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है
1: जी जी।
0: यदि हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने 47 का सपना देखा

0: साथ साथ देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारे हर नागरिक का इस 2000 जनगणना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी जी।
0: यदि हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने 47 का सपना देखा है उसको हम साकार होते हुए देख पाएंगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी जो नागरिक है वो हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षकों को जो 34 प्रश्न हैं उनका बहुत ही उत्साह के साथ और सही उत्तर दे।
1: और यदि उन्हें किसी तरह की जानकारी चाहिए या कुछ सहायता की आवश्यकता है तो क्या इसका भी कुछ विकल्प या प्रावधान है?
0: बिल्कुल। एक हमारा अभी एक चरण हुआ था 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना, और हमारे जिला प्रशासन ने इस स्वगणना को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था कि अधिक से अधिक जो नागरिक है जिले के वे स्वगणना करें। उस स्वगणना से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वही प्रश्न अभी जो आपको ऑफलाइन प्रगणक पूछने आएगा वो सारे प्रश्न आपके स्वगणना में थे
1: जी।
0: और यदि आपने वो स्वगणना की है तो उन स्वगणना के प्रश्नों से आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे पास प्रगणक आ रहे हैं वो बहुत सामान्य जानकारी हमसे प्राप्त करेंगे। सामान्यतः एक उसके मन में एक भ्रांति होती है कि मैं ये जानकारी यदि बता दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक विश्वास के साथ ये बता सकता हूँ कि ये जो आपकी जानकारी है ये इतनी गोपनीय है कि जैसे ही यदि हमारे जो प्रगणक है आपने ये जानकारी उनके पास लॉक की तो इसे देश का कोई भी कितना ही बड़ा जो प्रमुख भी व्यक्ति हो वह अपना व्यक्तिगत डाटा नहीं देख पाएगा। इसलिए आप इस बात से बहुत आश्वस्त रहे कि इसकी गोपनीयता बिल्कुल भी भंग नहीं होगी।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और अपनी बातचीत के अंत में हम अतिरिक्त जनगणना अधिकारी नरेंद्र गौतम साहब से भी जानना चाहेंगे कि ये जो जनगणना 2027 है अंततः क्या प्रभाव डालेगी हमारे आज के भारत पर, और जैसा 2047 का हमारे सपनों का भारत है एक लक्ष्य है उस पर।
2: आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र गौतम, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी बैतूल। सर, जैसा कि अभी हमारे मास्टर ट्रेनर और तकनीकी प्रभारी महोदय ने आपको विस्तृत जानकारी दी, दरअसल जनगणना 2027 विकसित भारत 2047 के जो व्यापक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की आधारशिला रखेगी। सर
1: जी,
2: मैं बैतूल वासियों से अपील करते हुए कहूंगा कि जनगणना 2027 में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और प्राधिकृत 33 प्रश्नों का जवाब अवश्य दें, प्रगणकों का सहयोग करें, क्योंकि जनगणना 2027 जो कि एक डिजिटल जनगणना है यह वह सांचा है जो कि आने वाले बैतूल के आकार प्रकार आकृति, आने वाले मध्य प्रदेश के आकार प्रकार और आकृति और संपूर्ण भारत के वास्तविक आकार जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सम्मानी जनता ने सोचा है कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो उसका सांचा तैयार करेगी। इस सांचे के मूलभूत उपकरण अंग या पार्ट्स होंगे हमारे द्वारा पूरे देश से विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों, विभिन्न तहसीलों, ब्लॉक, गांव, मजरे, टोलों से एक एक जनमानस से संग्रहित की गई सूचना या डाटा आपके द्वारा हमारे प्रगणकों के माध्यम से संकलित 33 प्रश्नों के सटीक जवाब वो उपकरण होंगे जो जनगणना 2027 के रूप में जो सांचा तैयार होगा उसका प्रत्येक उपकरण ऐसा होगा कि हम एक विकसित भारत सपनों के भारत को वास्तविक आकार दे सके। हम सपनों के भारत को गढ़ने का सांचा इसीलिए कह रहे हैं सर क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्यगत, अवसंरचनात्मक और अन्य सभी विधाओं में आपको ये अपेक्षा है कि भारत एक विकसित देश बने, शिखर पर हो, विश्व का नेतृत्व करे और जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है विश्व गुरु की, वापस से उस गौरवशाली परंपरा को अर्जित करे। उसके लिए सबसे जरूरी सर हमें पता हो कि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए।

0: जानकारी को जुटाने का सबसे विश्वसनीय और सबसे समन्वयकारी परंपरागत व्यवस्था के रूप में हमारे पास माध्यम है जनगणना। जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई और अब हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां हम डिजिटली जनगणना करके एक एक व्यक्ति तक सीधे पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से, और हमने स्वगणना करके जन सहभागिता को भी डिजिटल जनगणना में सम्मिलित किया था, जो कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारे जिले और मध्य प्रदेश राज्य में संचालित हुई, जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 19,000 स्वगणक बैतूल जिले के रहे हैं। तो इस जनगणना से सर उन्होंने स्वयं भी और जनगणना के हमारी पूरी जिला टीम ने भी यह तय किया कि इतना कुछ है जिससे हम अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है का आकलन कर सकते हैं, और इसी के आधार पे हमारी सरकारें हमारी व्यवस्थाएं यह निर्धारित करेंगी कितने की कहां क्या आवश्यकता है, ताकि हम हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य आवश्यकताओं की चाह रखने वाले पीड़ितों के लिए, हमारे उन जरूरतमंद जिन्हें आवास की जरूरत है उनके लिए, दैनिक आवश्यकताओं के लिए सड़कें, बिजली, पानी, भोजन, खाद्यान्न की आवश्यकताओं के आकलन के लिए ये जनगणना के आंकड़े सर बड़े विश्वसनीय होते हैं। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए, कितने लोगों को कितना राशन लगेगा इसका हमें सटीक आकलन करना होता है सर, ताकि एक परिवार, एक व्यक्ति, एक भी भारतीय ना छूटे। तो हम ये आंकड़े जनगणना के माध्यम से जुटाते हैं और यह आंकड़े जुटाने के बाद हमारा वास्तविक आकलन हो, इसमें देरी ना हो, इसीलिए हमने तकनीक का प्रयोग किया और इस तकनीक ने हमें इतना सक्षम बना दिया है सर कि हम इन संकलित आंकड़ों जो हमारी सर्वर के माध्यम से होगा, CMMS पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण होगा सर, और उनका प्रसंस्करण इतनी तेजी से होगा कि हम आगामी 12 से 15 महीनों में शुद्ध संख्यात्मक डाटा प्राप्त करके हम ये निर्धारित कर सकेंगे कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितनी आवश्यकता है, हमें कितने स्कूल चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, कितनी हमारी परंपरागत नवीनीकरण और कितनी अन्य प्रकार की ऊर्जा की उपलब्धता है, कितनी हमें अन्य ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। 2027 में हमारे पास ये है, 30 में ये होना चाहिए, 35 में ये होना चाहिए, 40 तक हमारे पास ये होगा, इस दर से हम ग्रोथ करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में हमको ये व्यवसाय करना होगा, हमारी कार्यशील जनसंख्या इतनी है, इसको बढ़ाने के लिए हमको इतना करना होगा, इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए हमारे पास इतने संसाधन है, इतने संसाधनों की आवश्यकता होगी, और हम यह भी आकलन कर सकेंगे सर कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर हम सशक्त देखना चाहते हैं और हम सतत विकास के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो किन संसाधनों को कैसे उपयोग करना है और किस तरह से उपयोग करना है, ये जनगणना 2027 हमें बताने में एक बेहतरीन मार्गदर्शक, बेहतरीन विश्वसनीय सांचे के रूप में सहयोग करें।
1: अच्छा,
0: 4 बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, जनगणना 2027 का वर्तमान में 1 मई से 30 मई तक प्रथम चरण संचालित है, जिसमें मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा और मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें गण जन अर्थात व्यक्तियों की गणना की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अपील करना चाहूंगा कि जनगणना 2027 के अंतर्गत चाही गई समस्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए कोई दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई OTP की मांग प्रगणक हमारे नहीं करेंगे और नहीं करते हैं, अगर ऐसा करते कोई भी पाया जाता है या कोई भी करता है तो आप 1855 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जनगणना संबंधी सहायता के लिए जिला स्त्री कंट्रोल रूम और चार्ज स्त्री कंट्रोल रूम संचालित है, अतः आपको जनगणना से संबंधित कोई भी प्रश्न या फिर जानकारी चाहिए तो संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन जिला बैतूल मुख्यालय में कक्ष क्रमांक F2 में संचालित है। इसी प्रकार सभी चार्ज कार्यालय अर्थात तहसील और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के कार्यालय में भी यह जनसंख्या से संबंधित कंट्रोल रूम संचालित है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जिला जनगणना कार्यालय की ओर से मैं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी और टीम आपसे विनम्र अपील करती है कि जनगणना 2027 में आप उत्साहपूर्वक भागीदारी करें। प्रगणक प्रगति और विकास जब आपके घर आए तो उन्हें पूछे गए प्रश्नों के सटीक जवाब दें, सत्य जवाब दें। मैं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी के रूप में आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब या जानकारी पूर्णतः गोपनीय है और इसे किसी भी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह कभी भी गोपनीयता भंग नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर अपनी जानकारी दें।
1: बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के बारे में, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्यों की जा रही है और क्या इसकी प्रविधि है। आज जो हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में नरेंद्र गौतम साहब, विनोद कुमार अडलग जी और आशीष वागर्दे जी, आपने जो समय दिया और एक महत्वपूर्ण जानकारी बैतूल के श्रोताओं के साथ साझा की, उसके लिए और हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारा बैतूल।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल। इस कार्यक्रम में आपने जाना जनगणना 2027 पर केंद्रित अतिरिक्त जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद कुमार अडलक और तकनीकी प्रभारी श्री आशीष बागद्रे से सचिन भागवत की चर्चा। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। चंद लम्हों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
4: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
4: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
5: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
4: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
7: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
4: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
8: For the season of खरीफ 2026, खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारी कसम फिल्म से। इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने। रचनाकार आनंद बख्शी।

द ग्रेट गैम्बलर। लीजिए अब इस फिल्म में सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को। संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने, बोल आनंद बख्शी के।

देस परदेस अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, बोल अमित खन्ना के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी। और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चित, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हटके चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है, किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेला ही है सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया, तो वहाँ पर

0: रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए और मैं वहां गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं। लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं। लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
2: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
2: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
3: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया।
3: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
3: मैंने है ना 2 दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
3: हाँ।
1: किसको?
3: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
3: उदित करके सारे दरबार के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन ए आंडू पांडो।
2: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्यों मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
4: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

0: ये जाए।
1: कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं, वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
2: आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम में पहली व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। मजनू का टिल्ला, यहाँ से श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश के उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज़ में नगीना फिल्म का एक गाना, बोल आनंद बख्शी के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये

कार्यक्रम में अगली वाट्सएप फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी, बागपत के श्रोता आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। अन्य श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और ये हैं आजाद नगर लश्कर हरिद्वार के श्रोता। फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार के श्रोता हैं भूषण खेड़ा, शिव, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिबानशी, वाणी, बी आर खेड़ा और जीवन से हैं। आप सभी सुनना चाहते हैं सदमा फिल्म का एक गाना येसुदास की आवाज़ में, बोल गुलजार के संगीत इलैया राजा का।

आपके मीत ये गीत इस कार्यक्रम में अगली व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरेकर। दतरेंगी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। आप सुनना चाहते हैं राम बलराम, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगली व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। सब्जी मंडी बुलढाणा के श्रोता हैं शब्बीर हुसैन, सहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आईजाइनम और मुदस्सिर हुसैन। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर से हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया, काला पानी फिल्म का ये गीत।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। जिला नांदेड़, ये ताला महाराष्ट्र के श्रोता हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। अन्य श्रोता हैं गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के श्रोता हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में मल्हार फिल्म का ये गाना, बोलिंदीवर के संगीत रोशन साहब का।

आपके मीत ये गीत इस कार्यक्रम में अंतिम व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी की शामिल हो रही है। संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। धनोरी तेलीवाला के श्रोता निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। आप सभी सुनना चाहते हैं हीर रांझा, इस फिल्म का गाना लता जी के स्वर में। गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

लता जी के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें कलाकार हैं फैजल कपाड़िया।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आज इसमें कलाकार थे फैजल कपाड़िया। ये आकाशवाणी बैतूल है। चंद लम्हों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री

0: टारपुलिन को बढ़ावा दे। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा

बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की

पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब हमारी आज की प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।